0: Tommo.
1: Het is onder bijan en schrottaun en schuna uit de film Doel Kapoor. 1959, composed by Endetta. Sahir Ludhian Wikel Vaze, aur awazit heb. Padma Shri Mahender Kapoor, aur Mashur Ganewali from the 60s, 70s, Sudha Malhotra. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

0: तो यार प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि हब त्यू नाश डाओ तेजलीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे अति सुंदर प्रोग्राम, खास करके महान संगीतकार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर भूपेन हजारिका जी के कुछ नगमे लेकर आया हूँ, और उसके बाद आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किए है, बीच में कुछ ज्ञान के बातें शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो लव्स यू ऑल।
1: बैक टू स्कूल डील्स।

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे भी प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक अति सुंदर बयान, एक खूबसूरत द्वैत फ्रॉम द मूवी आरोप। हसीनों का पुजारी और संगीतकारों का बादशाह और सहिंशा किशोर दा के मधुर आवाज में आप सुनेंगे साथ दे रही है भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्त्रो भूपेन हजारिका। नैनों में दर्पण है ब्यूटीफुल डुएट स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया नैनो में दर्पण है, फ्रॉम द मूवी आरोप, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी और किशोर दा के ब्यूटीफुल आवाजों में, कंपोज बाय माएस्ट्रो भूपेन हजारिका। अगला बयान फ्रॉम द मूवी एक पल 1986, और इस बार आप सुनेंगे डॉक्टर भूपेन हजारिका के मधुर आवाज में, साथ दे रही है उषा मंगेशकर जी, भूपेंद्र सिंह और हेमंती शुक्ला, जरा धीरे जरा धीमे। ये अति सुंदर बयान को लिखा है महान लेखक श्री गुलजार जी ने।

A great composing by maestro Dr. Bhupen Hazarika. Uit de film Ek Pal 1986. Mahan lekhak Gulzar ke Alfaze. Aur awazit hai the man himself, Dr. Bhupen Hazarika, Usha Mangeshkar, Bhupinder Singh aur Haimanti Shukla. अगला बयान आई नींद धीरे से मशहूर गाने वाली एड यार 90-2000 कविता कृष्णमूर्ति जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान कंपोज बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका.

आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया आई नींद धीरे से वतन खफूर लीत सॉन्ग डोर मशहूर गाने वाली फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आई डीआर 90-2000 कविता कृष्णमूर्ति कंपोज एंड अरेंज बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका. पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं. संगीतकारों का दास्तां और दास्तां चल रहे हैं महान म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर लेखक एंड प्रोड्यूसर द ग्रेट डॉक्टर भूपेन हजारिका का. प्रोग्राम आगे जारी करने से पहले कुछ ज्ञान के बातें हो जाए यारो. पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों कुछ पढ़े लिखे लोगों मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ यारो. ये याशोमीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम लोग सीखेंगे तो ज़रा गौर फरमाए. अर्ज किया है श्री राल्फ वाल्डो एमर्सन Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882 Ralph Waldo Emerson ne kaha hai manushya ke bare mein aur ki de genoegens van het leven hangen af van de mens die het leeft en niet van het werk of de plaats. Aage mein kaha hai Jean-Paul Sartre, Frans schrijver, filosoof en Nobelprijswinnaar literatuur 1964 Liefde van 1905 tot 1980 als Jean-Paul Sartre nekahai manusje kebarme aroki. De haat van één mens voor een ander is voldoende om ellings de hele wereld aan te tasten. Hugo Claus, Frans schrijver en schilder 1929-2008. Oh, Hugo Claus ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki the mens is de ergste kwaal voor zichzelf. Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en schrijver, 43 tot 106 voor Christus. Oh, Marcus Tullius Cicero ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki geen verstandig mens zal ooit zeggen dat verandering van mening onstandvastigheid is. Harry Mulisch, Nederlands schrijver 1927 tot 2010. Oh, Harry Mulisch, nekahai manusjeke baremearoki. Ieder mens heeft, geloof ik, het gevoel dat hij er eigenlijk niet bij hoort, bij het leven van de andere mensen, dat hij op een of andere manier iets anders is, een gast, en hij doet alle mogelijke moeite om te zorgen dat de anderen dat niet zullen merken. Dat is het gevoel dat alle mensen gemeen hebben en daardoor horen ze juist bij elkaar. Nelson Mandela, Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidstrijder 1918-2013. Ik was geen messias, maar een gewoon mens die een leider werd als gevolg van een buitengewone omstandigheden. Johann Wolfgang von Goethe, Duits schrijver en dichter, 1749-1832. Oh, Johann Wolfgang von Goethe, nekahai manusjeke barmearoki. Juist zijn dwalingen maken de mens beminnelijk. Erasmus, Nederlands humanist en filosoof, 1469-1536. Oh, Erasmus, nekahai manusjeke barmearoki. Wie weet niet dat een mens nooit meer zo blij is als in zijn prille jeugd? Mohammed Ali, Amerikaans bokser 1942-2016. Al Mohammed Ali, de mens die geen verbeelding heeft,
heeft geen vleugels. En de laatste van vandaag, Kahaheer Mahalekhak, Salman Rushdie, een Indië geboren Brits romanschrijver, 1947. Als Salman Rushdie ne Kahaheer Manushya ke bare mein aaruki, de mens heeft God van het begin af gebruikt om het onrechtvaardige te rechtvaardigen. Toen je kuch kahaute udaharan suna jo manushya ke bare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Je als je onmiddellijk in bato komen, je hebt zo dan kus sunaya, ki in bato se kuch na kuch to hum log jarur sikhenge na. लेकर चलते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो, महान म्यूजिक डायरेक्टर और गायक लेखक प्रोड्यूसर जिनके याद में लिविंग लेजेंड था, एक बाप रे बाप, एक 9 किलोमीटर से लंबा 9.15 किलोमीटर का सेतु यानी ब्रिज ब्रोकी बनाया गया है ये महान संगीतकार के याद में. तो यू कैन सिख फोरस्टेलर हुफेल गुड्स क्वा म्यूजिक है वर्ल्ड वाइड हैफ्ट गदान की ये महान संगीतकार को दुनिया भर जानता था. बड़े बड़े सिंगर्स जो अलग कल्चर्स के भी थे, यानी कि अमेरिकन कोलंबियंस और साउथ अमेरिका में अफ्रीका में भी लोगों ने ये महान संगीतकार के गाने फिर से गाए, यानी कि कॉफ़र्ड किए हैं. तो आगे मैं कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा मैं. तो ये महान संगीतकार के मधुर आवाज़ में आप सुनेंगे एक बंगाली सॉन्ग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये असम या तो बंगाली सॉन्ग्स कंपोज किए और कुछ हिंदी सॉन्ग्स भी बनाए हैं जो मैं आप सभी को इस वक्त सुना रहे हैं. तो ये अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला नगमा है, मनुष्य के बारे में जाता है. तो मिलके सुनते हैं.

Beautiful song composed by Dr. Bhupen Hazarika, और उन्हीं के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। ये भी एक जबरदस्त लेखक भी था, उन्हीं का लिखा हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुना। शाम ढले बन में ब्यूटीफुल सॉन्ग आई द फिल्म दो राहें 1998 और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को महान गायक द प्रिंस ऑफ बॉलीवुड द ग्रेट उदित नारायण जी और साथ दे रही है इस बार एक बार फिर कविता कृष्णमूर्ति कंपोज एंड अरेंज्ड बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका।

जबरदस्त बयान आप श्रोताओं ने सुना है फिल्म दो राहें कंपोज्ड बाय मैस्ट्रो डॉक्टर भूपेन हजारिका और आवाजें थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति जी का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड हमेशा की तरह। और ये प्रोग्राम तो संगीतकारों का दास्तां है ना, तो महान गायक लेखक म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं हमारे भारत देश के लिए, जिनके नाम पे नीखपंत 15 किलोमीटर का ब्लॉकी बना है, तो आप कल्पना कीजिए कि कितना महान इंसान के बारे में मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। अगला बयान एक आखिरी बयान है आज के इस हसीन प्रोग्राम में जो आप लाइव सुन रहे हैं दनहा शहर से रेडियो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी जो ये महान संगीतकार के साथ कुछ नगमे बनाए हैं, और ये म्यूजिक डायरेक्टर लता जी के बहुत ही ख़ास म्यूजिक डायरेक्टर था, दिल के करीब भी था, तो उन्हीं के बनाए हुआ ये मीठी सी धुन लता जी के मधुर आवाज में और महान लेखक गुलजार के अल्फाज़े झूठी मूठी मितवा आवान बोले ब्यूटीफुल ऑडियो सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Ja, but hey, a masterpiece of composing by maestro Dr. Bhupen Hazarikai, de film Rudali, Gulzare, महान लेखक के अल्फाजे और आवाज था क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। यही तक था आज का ये स्पेशल डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो समाप्त होने को आया। तो आप भी जाइए, कुछ चाय कॉफी या जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको बेफिल कीजिए, पीजिए, और साथ ही साथ विज्ञापन और कॉमर्शियल भी सुनते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारों कहीं।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतुलक उक्त बुलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत हैं, तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, ऑर्गामन या तो ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेडेंस कंटोर यूरो फनफ मांडा तोत फ्रेडा फन 9 तोत 5 अप 073562247, दफ्तर कतार का नंबर और स्टूडियो कतार का नंबर है 073262277। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। इवेंट फन हार्ट वेलकम। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। और बीते हुए सप्ते हम पहुंच चुके थे फिल्म खजांची तक, जो रिलीज किया गया था 1958 महान संगीतकार मिस्टर M&M द ग्रेट मदन मोहन जी के साँच पर, राजेंद्र कृष्ण के शब्दे हैं। और इस फिल्म में काम किया है राजेंद्र कुमार जी के साथ बलराज सानी, श्यामा मनोरमा, हेलन और केशतो मुखर्जी भी इस फिल्म में काम किए। तो इसी फिल्म में से कुछ नगमे आप सुनेंगे, मिल के सुनते हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रही है आप सभी को क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। आंखों आंखों में हो गए मस्त इशारे, क्या बात है वाह।
1: अब आप हमारे अमेचर प्रोग्राम की सुप्रसिद्ध गायिका कुमारी गीता से गीत सुनिए।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, आंखों आंखों में हो गई मस्त इशारे है। फिल्म खजांची 1958, अशा भोसले जी के मधुर आवाज में, म्यूजिक बाय मारेस्ट्रो मदन मोहन और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का। एक और अति सुंदर बयान, दिवाली तो अक्टूबर में हम लोग मनाएंगे, लेकिन ये फिल्म में ये अति सुंदर बयान आया था तो मैं सुना देता हूँ। खजांची 1958, ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय मदन मोहन, आई दिवाली आई, अशा भोसले।

अति सुंदर बयान आई दीवाली आई आई द फिल्म खजांची 1958 मदन मोहन जी के मधुर सांच पर अशा भोसले और साथियों के ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। तुम सामने आकर जिस दम एक फिल्म खास जांची मदन मोहन के साज पर और इस बार एक अति सुंदर दुएत है आप श्रोताओं के सेवा में पेश करने वाले हैं सुर का बादशाह रफी साहब और दे क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल म्यूजिक फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आशा भोसले जी टुगेदर विथ रफी साहब ब्यूटिफुल डुएट स्पेशल।

अजांची तुम सामने आकर देखो, ब्यूटीफुल डुएट अक्षय भोसले और रवि साहब जी के आवाज में, म्यूजिक बाय मदन मोहन। जुलुम लेके आया एक अति सुंदर बयान, मुजरा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी खजांची, और जिस खूबी से मदन साहब ने ये नगमा को बनाया है तारीफे काबिल, राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे अश्य भोसले।

जुलूम लेके आया ब्यूटीफुल मुजरा सॉन्ग आपने सुना एक फिल्म खजांची 1958 मदन मोहन जी के ब्यूटीफुल संगीत आप सुना आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। प्रिय प्रिय श्रोताओं कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए।

कुछ नए नए शेयर्स दोस्तों के बारे में भेजा है यारों का यार, मेरा तो भी वो जिगरी दोस्त है, शेयर का भंडार भेज देता है कभी कभी, तो उसी के कुछ लिखे हुए शेयर्स आप सुनेंगे। भाई भूपेंद्र डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सेती। अर्ज किया है यार कि आंसू ना होते तो आंख इतनी हसीन ना होती, आंसू ना होते तो आंख इतनी हसीन ना होती, दर्द ना होता तो खुशियों क्या होती, पूरी करते खुदा यूं ही सबकी मुरादे, पूरी करते खुदा यूं ही सबके मुरादे, तो इबादत की कभी जरूरत ना होती यारो। हम वो फूल है जो रोज रोज नहीं खिलते, ये वो होंठ है जो कभी नहीं सिलते, हमसे बिछड़ेंगे तो एहसास होगा तुम्हें, हमसे बिछड़ेंगे तो एहसास होगा तुम्हें, हम जैसे दोस्त रोज रोज नहीं मिलते। क्या बात करोगे याद तो हर बात याद आएंगे, करोगे याद तो हर बात याद आएंगे, गुजरते वक्त की हर मुलाकात याद आएंगे, तलाश करोगे हमसे बेहतर दोस्त को, तलाश करोगे हमसे बेहतर दोस्त को, निगाहें दूर तलक जाकर और लौट आएगी, लेकिन मेरा जैसा दोस्त आप नहीं पाओगे। ये दुआ है हमारी कि बीते सुख से जिंदगी तुम्हारी, दोस्त मुझे प्यारी है तेरी यारी, दोस्त मुझे तो प्यारी है तेरी यारी, जिसके लिए वार सकता हूं दुनिया से सारी। एक मुलाकात करो इनायत समझकर, सारा हिसाब देंगे इनायत समझकर, मेरे दोस्ती पर शक मत करना, मेरे दोस्ती पर मत शक करना, हम दोस्ती भी करते हैं इबादत समझकर। क्या बात है, वाह। दोस्ती तो सिर्फ एक इत्तफाक है, ये तो दिलों की मुलाकात है, दोस्ती नहीं देखती ये दिन है कि रात है, इसमें तो सिर्फ वफादारी और जज्बात है। क्या लवली शेयर्स आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया, लिखा है दौर भाई भूपेंद्र। अगला बयान एक आखिरी बयान है आई डू फिल्म खजांची 1958, इंडियन रॉक एंड रोल कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन, ताल मटोल करो जाए। ये कह रही है आशा जी।

Taal me tolen kere, mazidar song, agri song uit de film Kazanchi 1958, composed by Madan Mohan, Asha Bhosle, G.K. Madhur, Avans me. हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म खजांची के आप सुन चुके। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था ऑल्सो इन 1958, फिल्म तालाक। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाय हुस्न कामिनी कदम जी के साथ। महान महान महान द ग्रेट ग्रेट ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर चितलकर रामचंद्र के साज है। महान लेखक कवि प्रदीप के लिखा हुआ ये सभी गाने आप सुनेंगे, तो उसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे। नई उम्र की कलियों, क्या बात है, नई उम्र की कलियों। अच्छा भोसले जी सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सी रामचंद्र के साज पर।

ब्यूटीफुल मजेदार सॉन्ग झुक गई देखो गर्दन उनकी एट फिल्म तलाक 1958 श्री रामचंद्र के साक्ष पर अक्षय भोसले और साथियों। अगला बयान कहनी है एक बात हमें मन्ना डे जी को लाते हैं प्रोग्राम में साथ दे रही है उस जमाने के गाने वाली आरती मुखर्जी और क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी। मिलकर सुनते हैं

गगन गूंजता नारों से मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज दे

ब्यूटीफुल सॉन्ग देशभक्ति के गाना आप श्रोताओं के सामने पेश किया गया है द फिल्म तालाक 1958 कंपोज बाय चितलकर रामचंद्र। गाने वाले थे अशा भोसले, मन्ना डे, आरती मुखर्जी साथियों के साथ और लेखक द ग्रेट कवि प्रदीप कुमार। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। ब्रेक के बाद मैं मिलता हूं आप सभी से। कहीं जाना मत प्लीज।

0: सभी प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
1: जी हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55 से आप सुनेंगे और गीत का बोल है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। मोहम्मद रफी के साथ में गीता दत्त आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद यानी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे ना जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो सुबह से जाहिर नहीं करते।

अभी आप सुन रहे थे दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों के तरफ देख जमाने पे ना जा। फ्रॉम द मूवी हमसाया से हमने पेश किए है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना, जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आए। जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे, क्षमा करना सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी नहीं बल्कि मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। द माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

दमाईती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे, जिक्र होता है जब कयामत का, फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। हमारी नीयत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमें कुछ नहीं दे सकता। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी कन्यादान से वो तेरे प्यार का गम। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

दमाईती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे वो तेरे प्यार का गम, माई लव है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आदमी।

अभी आप सुन रहे थे ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आदमी से हमने पेश किए हैं, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले, मेरा दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यार, यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। मुकेश आपको सुनाने वाले हैं और विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माय पापा's फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ए गुलबदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

प्रोफेसर है फिल्म का नाम और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे ऐ गुलबदन। और ये सॉन्ग हमने पेश किया है स्पेशली शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। दमाईती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

तमाईती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार, के आंचल का मुझे प्यार।

सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, पक्का इरादा रखने का मतलब है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार ना हो जिसमें कमजोरी हो या ताकत की कमी हो। मित्रों, सिर्फ सही विचार और जीत के विचार जो आप खुद से कहते हैं पक्का है। जो आप खुद से कहते हैं और दृढ़ विचार हो मित्रों, वो लिफा मैंसन फर्स्ट बरादन जैन बतेकन खीन एंकल खदख्त है बन दी ज्वक्त ऑफ करख्त लोज है मैं जख्मे ब्रेंट अलेन अलेन पॉजिटिव खदख्तन एन खदख्तन फन ओवरविनिंग दी ये जेल फोर हाउट जैन जीकर। दिस blijf altijd positief, beste mensen, blijf altijd positief. Bhai behno, vishwas aur prarthana dono dikhai nahi dete, lekin ve na mumkin cheezon ko mumkin bana dete hain. Geloof en gebed zijn beide onzichtbaar, maar ze maken onmogelijke dingen mogelijk. Houd dat geloof en die overtuiging levend, beste mensen. Hou het levend. Mitron, kabhi samjhao mat. Sunie, kabhi samjhao mat. Tumhare doston ko iski jarurat nahi hai. Aur tumhare dushman is par yakin nahi karenge. Tumhare dushman nahi karenge aapke baat pe. आपके समझाने पर मित्रों, तो बेस्ट मेंशन, गीव नोइट uitleg, je vrienden hebben het niet nodig. Geef nooit ongevraagd uitleg, want ze hebben dat niet nodig. En je vijanden zullen het toch niet geloven. Ze zullen het toch niet geloven, beste mensen.

दोस्तों, एक बच्चा एक बड़े को तीन बातें सिखा सकता है। तीन बात: बिना किसी वजह के खुश रहना, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहना, लगे रहना मित्रों, और जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत से मांगना, पूरी ताकत से। बेस्ट मैनसन अनकिंत कानन फॉलोवासन द्री दिंगन लेरन, खुलकह जैन जोंदर रेदन, altijd bezig zijn met iets en met al zijn kracht eisen wat hij verlangt, beste mensen. Aur mitron, aapke paas jo hai, uske liye shukr guzaar rahe hain mitron.

और आपके पास और भी होगा। अपने कामों पर भरोसा रखें, वो मायने नहीं रखते मित्रों। मेहनत करो, एक लक्ष्य बनाओ और उसी पे चल पड़ो। लिफ मैनसन वेज दंग बार फॉर वॉच ए हैप एंड ये जो मेयर करेगन हैप फॉर थ्रॉवन इन ये दादन ज तैलन वेल देखलक मे, द तैलन देखलक मे। बेस्ट मैनसन।

दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्या हुआ, का होइगे। मित्रों, और सफल होने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो चीज़ों को करता है, मेहनत करता है, सही रूप से करता होगा। मित्रों, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और हाथ बटोर कर झलुआ में सूतल करियो मित्रों, तो कुछ ना बनी और बीमार भी हो जाइयो। हाँ, बेस्ट मैंसन एरजेन मैंसन The Dingen for Elkaar Krijgen en er zijn mensen die toekijken hoe dingen gebeuren en er zijn mensen die zich afvragen wat er is gebeurd. Lieve mensen, om succesvol te zijn moet je iemand zijn die dingen voor elkaar krijgt, moeite doet, vooruitstrevend is. Heeft een doel. Dus blijf je best doen. En het lukt wel. Het zal zeker lukken. Maar nu ook blij lesie man. En je wil iets groots worden. Rijk worden. Veel bereiken. Dat je lesie lek man. Zeker een pad doen. Pas op, hè. En als aan dat neer ook. Mitron. Ik zonder dress. हमारे लोक को बेहतर बनाती है, लेकिन सुंदर व्यवहार में हमारी जिंदगी बदलने की क्षमता होती है। कपड़ा से लोग कहेंगे वाह मुई मुई मुई मुई है, मगर तुम्हारा व्यवहार कैसे है, दैट इज बलांगर एक ओ मेंस अनमोय यूरोप फॉर बेहतर ओंस अतरलक क्लियर Maak de man, luidt een spreekwoord. Dus een mooie jurk verbetert ons uiterlijk. Maar mooi gedrag kan ons leven veranderen. Vind je dit niet mooi? Is dit niet mooi dat jouw leven verandert? Helemaal mooi.

भाई बहनों, जिंदगी एक सफर है जिसमें समस्याएं हल करनी है, प्रॉब्लेमन को हल करनी है, ऑप्लोस करनी है मित्रों, और सबक सीखना है इस जीवन की यात्रा में। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव बतलाना है, एरफारिंग जो आपको मिला है वो बतलाओ, शेयर करने और एंजॉय करने हैं मित्रों, मजा लेना है, दूसरों को भी बताओ सही सही बात। फ्रिंदन हैथ लीफ इस न रेस मेट प्रॉब्लेमन ओम ऑप्टोलोसन एंड लेसन ओम तुलेरन मार बोफनल एरफारिंग एन ओम तेलन एंड फन तनीतन। Je positieve ervaringen moet je met mensen delen, beste mensen. Aur saathiyon, hamare gharon mein sahi temperature hamare garam dil aur thande dimag se bana rehta hai mitron, hitkarak aur air conditioner se nahi, dimag thanda hona chahiye। बुरे बुरे विचार निकालो खोपड़िया में से वगैरह वगैरह, तब दिमाग ठंडा रहेगा। अन्यथा आप एयरको में बैठे हो मगर दुनिया भर के कचरा खोपड़िया में है तो कैसे ठंडा रहेगा दिमाग। आर्द खमैंसन द यस्त टेम्परेचर इन ऑन द हॉरिजन वर्ड खहंत हाफ दोर ऑन द वर्म हार्टन एंड कूल हेस्टन नीट दोर फॉर वार्मिंग en air conditioner. Nee, jij moet je verstand koel houden, nuchter zijn. Je moet niet negatief bezig zijn. Dan kan je wel in een airco-kamer zitten, maar daar heb je toch niks aan. Doston, halat, samay aur log kitab se behtar sabak sikhte hain, samasyaon se, एयरफारिंग से आपको और ज़्यादा ज्ञान मिले हैं मित्रों। ओके मैंसन सिटिवासिस टेट एंड मैंसन लेर ऑन बेटर लेसन दान एन बुक। मैंसन मैथ फेल एयरफारिंग एंड दी कन योर मेयर फॉर टैलन दान वॉट आर इन एन बुक की स्टार्ट बेस्ट मैंसन।

मित्रों, सुंदर विचार और अच्छे लोगों की संगीत एक संत आत्मा को पोषण है। मित्रों, मोये खदाख्तन एन हेट गजेलस्काप फन फेन मैंसन फूदन एन फ्रेड गजील। भाई बहनों, जिंदगी इस बात से नहीं मापी जाती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितना प्यार देते हैं, कितनी दया दिखाते हैं और कितनी यादें बनाते हैं। मित्रों, ये है मायनी। बेस्ट मेंशन हेट लीफन वोर्ड नित खमेतन दोर वत बजेतन मार door de liefde die we geven, de vriendelijkheid die we tonen en de herinneringen die we maken. Dat is belangrijk, beste mensen. Mitro, toota hua bharosa, dhyan karna. Toota hua bharosa, pighli hui chocolate ki tarah hai, chocolate ki tarah hai. To चाहे आप इनसे कितना भी जमाने की कोशिश कर लें, फ्रीजर में घुसेर दे ठंडा होने के लिए, जमने के लिए, तो ये कभी भी अपने असली आकार में वापस नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप अपने रिश्ता को, अपने जो बांध हैं किसी से अच्छे अच्छे रिश्ता, उसे बिगाड़ो मत, फिर बनेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। मित्रों, बेस्ट मेंशन gebroken vertrouwen is als gesmolten chocolade, hoe je het ook probeert te bevriezen. Het zal nooit meer zijn oorspronkelijke vorm aannemen. Het kan niet, bestaat niet, beste mensen.

मित्रों, खूबसूरत रत्न विनम्रता है। खूबसूरत रत्न विनम्रता है। सबसे बड़ा धन ज्ञान है और सबसे शक्तिशाली हथियार धैर्य है। धैर्य मतलब खदेड़ है। और सबसे अच्छी निश्चयता विश्वास है। और सबसे अच्छी दवा यानी मेडिसिन, सबसे अच्छी दवा हंसी है। खूब हंसा करो दोस्तों, खूब हंसो। दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं, मगर अच्छी बात पर, हंसी वाले बात पर खूब हंसो। शरीर के लिए ठीक है। मैं से हैत मोइस्ट सी रात इस नीदर है, द ख्रूस्त रेगदोम इस वैस है, हैत क्रख्तस्त वापन इस खदुल्त, एंड बेस्त जेकर है इस खलोव, हैत बेस्त मेडिसाइन इस लाखन, फ्लिंक लाखन, हार्ट लाखन, maar niet om een ander pijn te doen of te treiteren, dat niet, maar gewoon gezond lachen, beste mensen. Ey prani, kal ki koi garantie nahi hoti hai, isliye aaj apne jeevan mein logon ke liye pyar aur prashansa rakhein. Jeevan ka saar sabhi ke saath अच्छा व्यवहार करें, यही है कर्म जो जिसके द्वारा आप सुखी हो सकते हो। लिफा मैंसन मोरखन इस नोइ खरान देर दिस हैप फंदाख लिव द एन वर्देरिंग फॉर द मैंसन इन ये लेफन द बतेकन इस फनत लेफन वेस खुद फॉर इदरेन ongeacht geloof, cultuur, rang enzovoort enzovoort. Wees vriendelijk met iedereen, wees behulpzaam. Dat is wat de natuur van jou verwacht, beste mensen.

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

सुनने वालों को सेवा में मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। जो बीमार है भगवान से यही प्रार्थना किया जाता है कि आपके तंदुरुस्ती में परिवर्तन आए। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा और बधाई दिया जाता है। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई भी और मंगलमय दिवस प्रस्तुत है। जो अपने नौकरी की ओर पढ़ रहे हैं उनके ये कहूंगा कि हर बार की तरह मत भूलना कि गांधी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये मत सोच हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। जब ये माइंड आप में होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगा।

स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये कहूंगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। क्योंकि नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नर उतात्मम देवीम सरस्वती व्यासो ततो जय मुद्रियत। क्योंकि माता सरस्वती का देन बुद्धि और ज्ञान है।

माँ सरस्वती जो आपके जीवन में ज्ञान बुद्धि एवं समृद्धि का वरदान दे। माता की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बने रहे। और जो हमारे देश में सफर पे आए हैं तो उन्हें हार्दिक से स्वागत। से स्वागत करते हुए ये कहूंगा कि आप दुनिया के एक ऐसा सुंदर देश में आए हैं जहां जो स्वर्ग के समान कहा जाता है। अनलांत फॉल मेट मिशेयस। यहाँ जो रहते हैं अपने शहर को छोड़कर बगल वाले शहर को जब उस पे दृष्टि डालते हैं तो देखा जाए कि कितना बसीन स्वार्थ खेद भी है।

इस यहाँ सुंदर सुंदर मंदिरों भी है। जैसे कि अलमेर पैटा में श्री विष्णु मंदिर, दनहाक में सेवाधाम मंदिर, देव मंदिर और राधे कृष्ण मंदिर और राम मंदिर, अगर आप अंस्कदे में रहते हैं तो वहां भी एक मंदिर है, आरनहेम में शिव मंदिर, रोतरदाम में शिव मंदिर जो नीचे गुफा के तरह, जरूर जाकर देख जाना। श्रीमती विमला जी जो दनहाक के निवासी है, उनके ओर से ये सुंदर सा शिव तांडव प्रस्तुत।

कौशिक नामक एक ब्राह्मण बड़ा तपस्वी थे। तप के प्रभाव से उसमें बहुत आत्मा बल आ गया था। एक दिन वे वृक्ष के नीचे बैठे हुआ था कि ऊपर बैठे हुए चिड़िया ने उस पर बीट कर दिया। कौशिक को क्रोध आ गया, लाल नेत्र करके ऊपर को देखा तो तेज की प्रभाव से चिड़िया जलकर नीचे गिर पड़ी। ब्राह्मण को अपने बल पर गर्व हो गया। दूसरे दिन वे एक सद गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने गए। गृहस्थमी पति को भोजन परोसने में लगी थी। उसने कहा कि भगवन थोड़े देर और ठहरो, अभी आपके भिक्षा दूंगी। इस पर ब्राह्मण को क्रोध आया कि मुझे जैसे तपस्वी की अपेक्षा करके ये पति सेवा की अधिक महत्व दे रही है। और तभी गृहस्वामिनी ने देवी दृष्टि से सब बात ज्ञान ली। उसने ब्राह्मण से कहा कि क्रोध ना कीजिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ। अपना नियत कर्तव्य पूरा करने पर आपकी सेवा करूँगी। ब्राह्मण क्रोध और करना तो भूल गया। उसे ये आश्चर्य हुआ कि चिड़िया वाली बात इसे कैसे मालूम हुआ।

जो ब्राह्मणी थे उनसे पूछने लगा कि ये चिड़िया वाला बात आपको कैसे पता। तभी ब्राह्मणी ने इसे पति सेवा का फल बताया और कहा कि इस संबंध में अधिक जानना हो तो मिथिलापुरी में तुलाधार वैश्य के पास जाइए, वे आपको अधिक बता सकेंगे। भिक्षा लेकर कौशिक चल दिया और मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जाकर के पहुंचे।

कौशिक जब मिथिलापुरी में तुलाधार के घर जा पहुंचे तो क्या होता है कि वहां तौल और नाप के व्यापार में लगा हुआ उसने ब्राह्मण को देखते हुए प्रणाम अभिनंदन किया और कहा, तपो धन कौशिक देव जी, आपको उस सत गृहस्थ स्वामिनी ने भेजा है, सो ठीक है, अपना नियत कर्म कर लो, तब आपकी सेवा करूंगा, कृपया थोड़ी देर बैठिए। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना बताए ही इसे मेरा नाम तथा आने का उद्देश्य कैसे जाना।

आश्चर्य से घेरे हुए कौशिक बैठे सोच रहे हैं। थोड़ी देर में जब वैश्य अपने कार्य से निवृत्त हुआ तो उसने बताया कि मैं ईमानदारी की साथ उचित मुनाफा लेकर अच्छे चीजें हित की दृष्टि से बेचता हूँ। इस नियत कर्म को करने से ही मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। अधिक जानना हो तो मगध के नीच जाता चंडाल के पास जाइए और कौशिक मगध चल दिए और चंडाल के यहाँ पहुँचे।

चलते चलते कौशिक धीरे धीरे मगध आकर के पहुंचे जहां चांडाल का निवास स्थान था। वे नगर की गंदगी झाड़ने में लगे हुई थी। ब्राह्मण को देख करके उसने साष्टगन प्रणाम किया और कहा, भगवान आप चिड़िया मारने जितना तप करके उस सद्गृहस्थ्य देवी और तुलाधार वैश्य के यहाँ होते हुए यहाँ पधारे है, मेरा सौभाग्य है। मैं नित्य कर्म कर लूं तब आपसे बात करूंगा, तब तक आप विश्राम कीजिए।

कौशिक ब्राह्मण आश्चर्य से डूबे हुए और इंतजार कर रहे हैं और चांडाल सब सेवावृत्ति से निवृत्त हुआ तो उन्हें संग ले गया और अपने वृद्ध माता पिता को और दिखा कर कहा, अब मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं नियत कर्तव्य कर्मों निरंतर लगा रहता हूँ, इसी से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है।

इन सारे वृतांतों को देखते हुए तब कौशिक की समझ में आया कि केवल तप साधना से ही नहीं, नियत कर्तव्य कर्म निष्ठपूर्वक करते रहने से भी अध्यात्मकता का लक्ष्य पूरा हो सकता है और सिद्धि

सृष्टि का संदेश आप भी समझ गए होंगे। हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले श्रीमती विमला जी, उनके ओर से गीत को मांग किया गया।

कर्म की कहानी तेरी आत्मा भी जाने और परमात्मा भी जाने। धन्यवाद दिया जाता है कि श्रीमती विमला जी जो अपने ओर से ये सुंदर सुंदर गीतों को खोज करके हमारे लिए भेजे हैं। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

नित्य है, राधा अनंत है, राधा अनादि है, राधा भगवंत है, राधा अवकार है, राधा ब्रह्म है, राधा शक्ति है, राधा भक्ति है, राधा सबके है।

कहते हैं कि त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु संबंधों के बनाए रखने से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो एक सुंदर सा गीत और जो श्रीमती विमला जी हमारे लिए भेजे हैं, तो हम उसे सुनाने को कोशिश करूंगा।

तो मिला है, पता नहीं फिर कभी मिलेंगे या नहीं, पर इतिहास ये भी बताते हैं कि जिससे बराबरी नहीं हो पाती, लोग उसकी छवि खराब करने में जुट जाते हैं। शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ।

नया फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए हैं, एक फिल्म जो 2025 में नई खतीन मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया है ना, रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और...

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे है, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ की हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सोम कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

के प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफ़र मेरे, शाहिद कपूर और कृति सनान। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

तुही मेरा आज और तुही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों, हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर, उससे एक और गीत रखेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाले हैं। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

तो कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। और यही बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन हेत ग्रोटस्टा आंतल 364 इन हेत हिंदी वास,

स्त्री तू से निकाला गया है। ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

से दोहरा दिया जाए। तो क्या खूब कहा गया है कि संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते, संबंधों के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है।

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

जार चौबीस में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

2025 में रिलीज हुए ये फिल्म। सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुरानी फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर जिक्र करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुराने फिल्मों के नाम मैं जिक्र करता हूं तो शोले, सिलसिला, इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है के पास इंटरनेट है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा। यीशु के बगैर

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के और हम बढ़ेंगे।

हाउसफुल फाइव से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कॉमेडी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फर्नांडिस, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में चार गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, और हम जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं, और उसे जब हम चार से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में। और उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं।

प्लेलिस्ट 2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902। गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में, एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931।

और शायद इस बात को भी आप जानते होंगे, उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यारे 60, इन द यारे 70, द यारे 80 एंड 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सैदी के बाद

खुश हो अच्छे बात है, आपकी वजह से कोई खुश हो ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना, कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनने वालों, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था, मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good day.

आपको मुबारक हो, बधाई हो। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कहती हूँ भी कि फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से कि इस दुनिया में जीना हो तो

हम चलते चलते से आपके लिए यहाँ से हमने सुने हैं। शैलेंद्र जी और लता जी के आवाज़ में

0: महेंद्र कपूर हिट्स सॉन्ग हमरा से सुना दिया कि नीले गगन के तले।
1: ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है। कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति नीच। ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है। कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए, नीच ये शब्द हमारे समाज में सदियों से गूंज रहा है। कभी इसे जाति से जोड़ा गया तो कभी आर्थिक स्थिति से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के वास्तविक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नीच शब्द का संबंध जन्म से है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है? चलिए सत्य की खोज करते हैं। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद् गीता जन्म पर आधारित भेदभाव को सिरे से नकारता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात समाज का विभाजन गुणों और कर्मों के आधार पर हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। शास्त्रों के अनुसार नीच वह नहीं है जो किसी विशेष परिवार में पैदा हुआ है, बल्कि नीच वह है जिसकी प्रवृत्तियां तामसिक हैं, यानी वह जो अज्ञान, क्रोध और हिंसा में लिप्त है। महान संतों और स्मृतियों के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसे उच्च या निम्न बनाते हैं। शास्त्र चार प्रकार के लोगों को निम्न श्रेणी में रखते हैं। पहला, कृतघ्न, जो दूसरों के उपकार को नहीं मानता। दूसरा, अधर्मी, जो जानबूझकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। तीसरा, अहंकारी, जो सत्ता या धन के मद में अंधे होकर मानवता का अपमान करता है। चौथा, असत्यवादी, जिसकी वाणी और विचार में छल हो। यहां तक कि महान ऋषि वाल्मीकि और वेद व्यास के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि जन्म गौण है और ज्ञान सर्वोपरि। सवाल उठता है कि फिर समाज में यह भेदभाव आया कहां से? इतिहासकार मानते हैं कि बाहरी आक्रमणों और मध्यकाल के दौरान लचीली वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। स्वार्थ और अज्ञानता के कारण कुछ लोगों ने धर्म की गलत व्याख्या की और नीच शब्द को जन्म से जोड़ दिया। यह धर्म की नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था की विकृति थी। आध्यात्मिक रूप से हर जीव के भीतर एक ही आत्मा का वास है। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यदि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है तो कोई नीच कैसे हो सकता है? वास्तव में नीच केवल हमारे विचार और संस्कार हो सकते हैं, शरीर या कुल नहीं। आज के युग में नीच शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए करना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अधर्म भी है। हिंदू धर्म की असली सीख वसुधैव कुटुंबकम में है। श्रेष्ठ वह है जिसका मन शुद्ध है और जिसके कर्म समाज के कल्याण के लिए है। अपनी सोच बदलिए, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। नीच ये शब्द हमारे समाज के लिए
2: सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: जॉनी मेरा नाम, जी हाँ जॉनी मेरा नाम 1977 में पिक्चराइज है। हेमा मालिनी, देवानंद इसमें स्टार कास्ट है। हाँ, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
1: खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो हर पल खुद को बाहरी खतरों से बचाने में लगा रहता है, और जब ये किसी खतरे का सामना करता है तो कभी कभी एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता है जिसे हम बुखार कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुखार आखिर होता क्या है और ये क्यों आता है? असल में बुखार हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई बाहरी हमलावर जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। ये हमलावर पदार्थ, जिन्हें पायरोजेन कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से को संकेत भेजते हैं जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है, यानी ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पायरोजेन के प्रभाव से हाइपोथैलेमस शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाकर एक नए ऊंचे स्तर पर सेट कर देता है। जब ये थर्मोस्टेट ऊपर सेट होता है तो शरीर को ऐसा लगता है जैसे वह ठंडा है, भले ही शरीर का तापमान बढ़ रहा हो। इसी कारण हमें ठंड लगती है, कंपकंपी होती है और शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। ये बढ़ा हुआ तापमान कई बैक्टीरिया और वायरस के लिए प्रतिकूल वातावरण बना देता है, जिससे उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उनसे लड़ने में मदद मिलती है। लेकिन फिर सवाल आता है, बुखार की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, जैसे पैरासिटामोल या अन्य एंटीपायरेटिक दवाएं? ये दवाएं मस्तिष्क में PGE2 नामक रसायन के उत्पादन को कम कर देती हैं। यही रसायन हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को ऊपर सेट करता है। जब PGE2 कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को वापस सामान्य स्तर पर ले आता है और हमें राहत महसूस होती है। बुखार के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है संक्रमण, जैसे सर्दी, फ्लू, गले का संक्रमण या पेट का संक्रमण। लेकिन कभी कभी सूजन से जुड़ी बीमारियां

लता जी और रफी जी की आवाज में ये मौसम भीगा भीगा है। नेहा तीन सीफन तक में पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है और फिल्म का नाम है

अनुसार हमारी लंबाई का लगभग 80% हिस्सा हमारे जीन्स तय करते हैं। यानी अगर आपके माता पिता लंबे हैं तो आपके लंबे होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी का 20% खेल है हमारे खान पान और माहौल का। बचपन में मिलने वाला प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स हमारी हड्डियों के विकास को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि पिछले 100 सालों में दुनिया भर में लोगों की औसत लंबाई बढ़ी है, क्योंकि अब हमें बेहतर पोषण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नीदरलैंड्स के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं, जहां पुरुषों की औसत लंबाई करीब 6 फीट है। इसका कारण है उनका संतुलित आहार, खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स का अधिक सेवन और एक स्वस्थ जीवन शैली। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया और बोलीविया जैसे देशों में औसत लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके पीछे है वहां की जलवायु, खान पान और जीवन शैली का असर। तो सच ये है कि हमारी लंबाई सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि जीन्स, पोषण

हाँ चोरी पकड़ा गया, चोरी पकड़ा गया, उनसे मिली नजर। झुक गया आसमान से, निकाल दिया गया है लता जी के आवास में। कलाकार इसमें है शायरा बानू और राजेंद्र कुमार।

0: से हम सुनेंगे, अगर हम शराब पीते हैं तो उसका असर कहाँ से शुरू होता है और उसका असर क्या है?
1: क्यों? एक घूंट शराब पीते ही कुछ ही मिनटों में आपके दिमाग के अंदर केमिकल तूफान शुरू हो जाता है, और शराब आपके ब्रेन को अंदर से कैसे बदल देती है? देखिए, पहले 5 मिनट में जैसे ही आप शराब पीते हैं, वो आपके पेट से सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है और सिर्फ 5 मिनट में वो ब्रेन तक पहुंच जाती है, क्योंकि अल्कोहल एक छोटा मॉलिक्यूल है और आसानी से पानी में घुल जाता है। हमारा ब्रेन 70-80% पानी से बना है, मतलब अल्कोहल को सीधा रास्ता मिल जाता है। 5-10 मिनट बाद अब शुरू होता है असली खेल। यहाँ अल्कोहल बढ़ा देती है डोपामीन, जिसे कहा जाता है हैप्पी केमिकल। शराब पीते ही आप अचानक रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और थोड़ा ओवर हैप्पी महसूस करने लगते हैं। स्ट्रेस गायब, टेंशन खत्म। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। 10 से 20 मिनट बाद अल्कोहल बढ़ाती है GABA, जो ब्रेन को शांत करता है, और ब्लॉक करती है ग्लूटामेट, जो ब्रेन को एक्टिव रखता है। नतीजा, जजमेंट कमजोर, इनहिबिशन खत्म। आप वो बोल देते हैं जो नॉर्मल में कभी नहीं बोलते। गलत फैसले, रिस्की बिहेवियर, सब यहीं से शुरू होता है। फिर 20 मिनट के बाद अब असर पहुंचता है सेरेबेलम तक, जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन संभालता है। तब चलते वक्त लड़खड़ाहट, बोलते समय जुबान लड़खड़ाना, रिएक्शन टाइम धीमा, यानी आपको नशा हो चुका होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसला लेता है, यानी आपका कंट्रोल सिस्टम कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा पी ली तो। अब बारी आती है हिप्पोकैम्पस की, यही मेमोरी को संभालता है। रिजल्ट, ब्लैकआउट, आपको याद ही नहीं रहेगा आपने क्या किया, और ये सब सिर्फ 1-2 ड्रिंक से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, अल्कोहल एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, ग्रे मैटर से सिकुड़ सकता है, नुकसान धीरे धीरे शुरू होता है।
2: कुरान कराम शुद्ध वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugd. Strafrecht.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio.
6: Radio Fahon. Digitale radio. Fahon
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Broert-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20-24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
9: सबसे पहले हमारा राम राम नमस्कार अदाय बरसो सत्री अकाल हो। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हमेशा की तरह आज भी होंगे कुछ प्यारे प्यारे मीठी मीठी ऐप द्वारे बातें होगी और गाने हम चलाएंगे जो आपको पसंद है, जो भी आप चाहते वो भी हम करेंगे। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे दुख है और सुख है हमारा पूरा टीम आप लोग के साथ है, जहाँ तक आवाज़ पहुँचे हमारा ढेर सारा पैगाम पहुँचे, मोहब्बत पहुँचे और प्यार भी पहुँचे। मैं हूँ अनिल सर जो आपके खिदमत में आज अभी से लेकर 11 बजे से हम लेकर 3 बजे तक आपके साथ रहेंगे। और प्रोग्राम को मैं बताना चाहता हूँ आज का प्रोग्राम क्या है दोस्तों। अभी हम चलाएंगे कुछ गाने, नए गाने, सुखवार है आज नए गाने हम चलाएंगे। 12 बजे तक हम चलाएंगे नए गाने, 1 बजे से हम चलाएंगे टॉप 3 इंडियन सॉन्ग्स, टॉप 3 जो है वो सब गाने हम आप लोग को सुनाएंगे और हम उसके बाद सुनाएंगे जो 5 गाना है मोस्ट पॉपुलर इंडियन सॉन्ग्स वो भी हम सुनाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे सवाल और जवाब प्रोग्राम, सवाल और जवाब। मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मिल चुका है, काफ़ी लोग है जो सवाल सही जवाब को दिया है, जैसे हमेशा की तरह आज भी होगा सवाल और जवाब। मैं एक बार फिर से सवाल को पूछना चाहता हूँ, लाइनें खुल चुका है, आप मुझे ऐप कर सकते हैं। और सवाल है, एक आँख है तो भी अंधा है क्या है? और मेरा तार का नंबर है 9 0 0 4 3 8 0 8 3 3 2। मुझे ऐप कर सकते हैं, अंतर्वर्त आप दे सकते हैं, सही जवाब पे सही गाने को आप मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये प्रोग्राम आज चलाएंगे। आज शुक्रवार है, देखा जाए फ्रेदा सैफ ऑर्केस्ट्रा हो चुका है 2026 में, हम सब है वीकेंड हो चुका है, इसलिए कुछ नए नए गाने हम आप लोग

खजाना था, सच बात है। इसलिए हमें गाने आप लोग को लगे चुन करके बनाया, इस प्रोग्राम को चुन करके आप लोग के मैं सुनाने वाला हूँ। 50 साल पहले कुछ और जमाना था, कम था सभी कुछ, लेकिन दिलों में खजाना था।

जी हाँ दोस्तों, 50 साल पहले कुछ और ज़माना था। कम था सभी कुछ लेकिन दिलों में खजाना था। आप लोगों ने ठीक से इस गाने को सुना, सच में गाया है। कहते हैं कि बच्चे लोगों ने घर पे टेलीफोन लेके बैठ जाते हैं, माँ बाप बैठे हैं, घंटे घंटे बात नहीं होते हैं टेलीफोन के कारण। सच बात है, 50 साल कुछ और था, 50 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। चलो दोस्तों, हमने चलते हैं

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू की आवाज। सुखवार है दोस्तों, मौसम तरफ देखा जाए तो कुछ बंद बंद सा है। और यहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं दिनहा शहर से, जहाँ पे सर सराहत हवा चलते है। हमारा लव बोट तैयार होगा, खाना पक रहा है, अभी हम लोग के खाना खाना है। अगर आपको भी अनहापिया एत है कमलांग्स दिनहा शहर में लोग प्रोग्राम करते हैं, कॉल कीजिए, ऐप कीजिए, वेलकम। स्टूडियो में आप भी आ सकते हैं, जो भी काम करवाना है या फरमाइश या मौती खबर जो भी आपको करवाना है, आइए। हमारा स्टूडियो का नंबर है 9 7 5 2 2 4 7 ओपन स्टेट मानदा तो फ्राइडा 9 तो 5 4। आइए, जो भी काम कराना है, फरमाइश दिवाना है, शोक समाचार दिवाना है, जो भी है आप आइए, हम तैयार है आपसे काम करने के लिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, दिल तेरा नाम हुआ।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे और ये गाने जो आप सुन रहे हैं ये सब गाने हैं आई के मतलब है कुछ टेक्निक ऐसा है जो आवाज़ को बना देते हैं और सजा देते हैं भी, ये है आई। आई गाने आप सुन सकते हैं हर एक जगह भी। इस वक्त इंडिया में टेक्निक आगे चला गया है, आवाज़ सब बना देते हैं, इसलिए मैं कलाकार का नाम नहीं बता सकता हूँ। कोई गाने पे नाम नहीं है, किसी गाने पे नाम नहीं है, ये बताना ज़रूरी है कि सब आई है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे और ले जाते हैं मेरे हाँ नए गाना है। हम आज गाने को यूज़ करते हैं जैसा आज का मौसम है, मौसम के लेकर हम गाने को आप तक सुनाएंगे। जैसा मौसम वैसा गाना।

जी हाँ दोस्तों, मेरा हाथ थामे रहना वाहे गुरु। क्या गाना है, क्या अंदाज में इस गाने को गाया, लेकिन ये इसका मतलब है हर एक आवाज़ को ये सब सजा देते हैं। ऐसे सजा कर हम लोग के सुनाते ही बहुत अच्छा लगते सुनने के, लेकिन ये हर सब चीज़ मोख लखों में करे खतिन। दोस्त हम सब बना दीदम मुकेश के, दोस्त हम बना दीदम अरिजीत सिंह के, ऐसे ये टेक्निक बहुत आगे चल गया है। तो चलो दोस्तों, देखा जाए थोड़ा से घाम अब निकल है, घड़ी की तरफ देखा जाए हलफ तवालफ हो चुका है, और भूल मत जाना फ्रे दाखे ज़ईफ ऑगस्टस 2026 में हम चल चुके हैं, और सुरीनाम में इस वक्त हलफ ज़ईफ हो चुका है।

जी हाँ दोस्तों, दिल के जिवारे से आप सुन रहे थे और हम आगे ले चलते आप लोग के कुछ अंदाज में एक गाने को मैं आपको सुनाने वाला हूँ।

जी हाँ, हमारे सुनने वालों, अभी आप सुन रहे थे काफ़ी अच्छे गाने थे। चलो हम दो गाने के बाद हम चलेंगे न्यूज़ और रेखलामा की तरफ, उसके बाद चलेंगे हम टॉप तीन नंबर हिंदी इंडिया का और चलाएंगे द माउस पॉपुलर इंडियन सॉन्ग्स, पांच है जो पॉपुलर है इंडियन में, दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है, अभी हम सुनाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, तू ही मेरा ख्वाब है, तू ही मेरी सुबह का नूर है। हम सब मिलके सुनते हैं ना, क्या गाना है, क्या मौसम है। मौसम की तरह गाने भी हम सुनाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये था प्रोग्राम हमारा जो 11 बजे से 12 बजे तक प्रोग्राम था दोस्तों। अब हम आप लोग के लिए चलते हैं, देखा जाए तो हम आप लोग के न्यूज़ और कुछ रखलाम उसकी तरह उसकी हम ले जाते हैं। और देखा जाए तो मुझे ये न्यूज़ को रखना है, तैयार करना है प्रोग्राम को। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रोग्राम बना है जैसे मैंने अभी कहा था सुबह के ये एक घंटा था, कुछ मौसम वाली गाना गीत, जैसे मौसम है वैसे गीत थे, नए गाने थे। और 12 बजे से लेकर चलेंगे कुछ द टॉप 3 नंबर्स फ्रॉम बॉलीवुड, और उसके बाद 5 गाने हैं मोस्ट पॉपुलर इंडियन सॉन्ग्स, उसे भी मैं आप लोग को सुनाऊंगा। उसके बाद चलेंगे जो भी आप चाहे, सवाल पे सही जवाब दिया है तो जो भी गाना आप चाहते हैं हम उसे आपके कानों तक पहुंचाएंगे। ये फ्रॉम इसे दोस्तों हम वचन करके वचन देके वचन निभाना जानते हैं। हम तब तक के लिए हम चलते हैं न्यूज और रिक्लाम की तरफ।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट वाहन हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमिदाग, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost €2,54, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar €2,56. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073-652-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073-652-2247.
0: Jihad, dosto, bhi aap so rahe the, kuch news aur kuch reklam. Theek hai dosto, hum aap log ko le chalte hai. The top 10 from Bollywood. Top 10 ke jo pehla gana main aap log ko sunana wala hu. नंबर 3 पे है नेहा कटकर, मिले हो तुम हमको, और इसका जो लाइरिक्स है टोनी कटकर का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक भी टोनी कटकर है, उसका छोटा भाई है नेहा कटकर की आवाज़ हम सुनेंगे, आप लोग को सुनाएंगे। आज तलक ये नंबर 10 पे है, काफ़ी हलचल मचाया है इस गीत, बहुत ही हलचल मचाया है, टॉप गाना है, टॉप गीत है, बॉलीवुड का एक ही बहुत अच्छा कलाकार है नेहा कटकर। और मिले हो तुमको क्या अंदाज में, क्या आवाज़ में ये भाई और बहन इस गाने को गाया है, आज हम मिलके सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में नंबर 10 पे ये गाना आया है, नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की आवाज अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड पे। दुनिया भर में जहां जहां हिंदुस्तान के लोग रहते हैं वहां तक ये गाना नंबर 10 पे है। हम ले चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 क्या है? दिल बर नंबर 9 पे है। टॉप 3 के ये नंबर 9 पे है, हम सब मिलकर सुनेंगे। अब आप सब चुन है The Evergreen Love, The Love फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चुन है। दोस्तों, जनहक शहर से हम ये रेडियो करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये है नंबर 9 पे नेहा कक्कड़ और दीफानी एका मिलके इस गाने को गाया है। हमने चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 हम आप लोग को सुनाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, ये था नंबर 7, नंबर 8। हम आप के ले चलते हैं नंबर 7, जो काफी हाहाकार मचा रखा था दुनिया भर में, आज भी इस गाने तोपे तोप तीन का नंबर 7 हम आपको सुनाते हैं।
1: जासी के पहला प्यार हुंदा फिर व्या।
2: तो किधर ना प्यार करना?
1: थोड़े नाल। अगले जन्म की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना?
2: ये तो है, उन्हें जो व्या नहीं हुंदा उन्हें कला प्यार हुंदा।
3: जानवर किसे थांदे

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, पंजाबी गाना है नंबर सात पे है ये टॉप नंबर। हम ले चलते हैं नंबर छह पे, क्या है, फर्रा सिंह है यार, नंबर छह टॉप नंबर।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया। इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया।

0: दिस फोन.
1: व्हाट अबाउट
0: इट डिजर्व्स अ हग.
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नंबर छः. क्या आवाज़, क्या गाना, ये तो टीम में है दुनिया भर में दोस्तों. जहाँ जहाँ पे इंडियन रहते हैं, इंडिया गाना, इंडिया मूवी देखा जाते हैं, वहाँ के लिए ये तो टीम में गिरते हैं. चलो हम आप लेके चलते हैं नंबर पाँच पे. क्या है
3: ये राउडी बेबी?
2: जी हाँ, रोडी बेबी.

जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पे रोल दी बेबी। क्या गाना यार, क्या गाना। इस क्लिप अगर आप देखेंगे ना तो चुनमुन करे लगे यार। डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। क्या गाना है यार। चलो हम ले चलते हैं फतेह, राहत फतेह अली खान को। जरूरी था नंबर 4 पे, दुनिया भर पे नंबर 4 पे है।

जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पे था राहत फतेह अली खान का गाना जरूरी था कि आवाज में गाया है राहत फतेह खान, और नंबर चार पे है जरूरी था। हम चलते हैं नंबर 3 पे। हम क्या है दुनिया भर जहाँ पे हमारा हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, हम सब रहते हैं, वहाँ तक ये गाना टॉप है।

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो पर ना की हो।
2: ए सेठानी नीर बुरन चलेगी आज ना जाऊं मैं गई

जी हमारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नंबर तीन पे ये गाना था टॉप नंबर तीन। चलो दोस्तों, हमने चलते हैं नंबर दो। क्या है नंबर दो? एक फरा सिंह है, एक हित पंजाबी सॉन्ग से लहंगा। चलो हम आप लोग सुनाते हैं। आप सब चून है द एफ अगेन लव द लव फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे। आप सब चून है दोस्तों, और हम चलाते हैं नंबर तीन द टॉप नंबर दस। नंबर तीन पे हम सुनाए थे 3 9 8 7 6 5 4 3। हम चलते हैं नंबर दो पे। क्या है?

0: शरनेक्सस
1: बेमरजानिया पंजाबी हिट सॉन्ग्स नंबर टू पे है, दूसरा प्लेट पे है पंजाबी पुत्र, क्या गाना क्या पंजाब गाला गाना है दोस्तों। हम आप लोग के लिए चल जाए टॉप तीन के नंबर वन। हम अगर आपके ये बात में बताऊंगा कौन सा गाना नंबर वन पे है टॉप तीन के, तो हम सब बहुत अच्छा बात है कि ये गाना नंबर एक पे है जो पूरा देश में ये गाना चल रहा है। जहाँ जहाँ हमारा भाइयों बहन रहते हैं वहाँ तक ये लोग इसी गाने को यूज़ करते हैं और इसी गाने को सुनते हैं। वो और कुछ नहीं है, वो श्री हनुमान चालीसा है भाई, जो नंबर वन पे है दुनिया भर पे, नंबर एक गाना जो है इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते हैं वो है श्री हनुमान चालीसा। उसे हम सुनेंगे, देखा जाए 9 मिनट का है, 10 मिनट के है, हम सुनेंगे उसे, प्यार से सुनेंगे।
2: श्री गुरु चरण
1: नंबर वन।

जी हाँ दोस्तों, ये था नंबर वन इंडियन सॉन्ग्स टॉप 3 के नंबर वन था श्री हनुमान चालीसा, जो भी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये जो पांच गाना है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो ये गाना लोग सुने हैं, पांच गाना है। लेकिन हम समझते हैं टाइम नहीं है, अगले हफ्ते फ्राइडा को हम ये पांच गाना आप लोग के ज़रूर सुनाएंगे। एक गाना हम सुना सकते थे और न्यूज़ है, बयाम है, टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम दो गाने आप लोग के ज़रूर सुनाएंगे। ये पांच गाने में से जो सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं, गाना बजते हैं रेडियो पे या जहाँ जहाँ पे गाना बजते हैं वहाँ पे मिलियनन हो चुका है, लोग मिलियनन दफ़े हो चुका कि ये गाना बज चुका है। तो ये गाना काला देखा जाए तो ये गाना में क्या, काला चश्मा मूवी बार बार देखो, म्यूजिक कंपोजर है प्रेम हरदीप और कमल दियोन, और इसका जो रिमिक्स करिश्मा वो है बादशाह, गाना गाया है अमर अरशी और बादशाह, नेहा कक्कड़ इसमें भी है। चलो हम लोग के एक दो गाना टॉप फाइव जो पांच में से लोग ज़्यादा सुनते हैं, द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सॉन्ग्स है।

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.midsummerfestival.nl.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे न्यूज़ और कुछ रखलाम जो भी आप सुन रहे थे। हम चलते हैं, वक्त नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो फरमाइश से सही जवाब को दिया है। मुझे हर एक के लिए उसका अरमान पूरा करना चाहिए। जो गाना वो मांगा है हम ज़रूर सुनाएंगे, घर तक सुनाएंगे, कानों तक सुनाएंगे। चलो दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूँ, नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं, ये भी सैफन तक मिलियन हो चुका है और वास्ते ही अभी नंबर 3 में उस गाने को मैंने सुनाया था। एक छोटे रूप में हम आपको ये गाना सुनाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नंबर 2 और नंबर 8 पे। उसके बाद एक ही गाना चलेगा जुम्मा का, उसके बाद सवाल और जवाब के गाना। तब तक के लिए हम चलते हैं वास्ते नंबर 3।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया।

जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पे है वाह सत्य, जो अभी आप सुन रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये गाने को यूज़ करते हैं, सुनते हैं। सबसे ज़्यादा ये 5 गाना इंडिया में जहाँ जहाँ हमारा हिंदुस्तान भाइयों रहते हैं, सबसे ज़्यादा ये सब गाना लोग सुनते हैं। चलो दोस्तों, हम सुनाते हैं नंबर दो जो लोग ज़्यादा सुनते हैं। बेना तख्त तख मिलियन हो चुका है इस गाने जो मैं अब आप लोग को सुनाने वाला हूँ। नंबर 2

जी हाँ दोस्तों, नंबर टू द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सॉन्ग्स, जो सबसे ज्यादा लोग गाने को सुना है। चलो हम नंबर वन आप लोग को सुनाते हैं, जिसमें रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ ने काम किया है, और हम सुनते हैं। ये है नंबर वन पे, 100 मिलियन ज्यादा हो चुका है जो लोग इसे सुन चुका है, और ज्यादा हो चुका है। हम सुनते हैं एक आखिरी गाना चलेगी, नंबर पांच था, पांच गाना मैंने सुना दिया, जो टॉप जिसे जहाँ पे हमारा भाई बहन रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा सुना गया है। ये है नंबर वन।

जी हाँ, यही उमर है कल दे गर्ती से मिस्टेक, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ जो नंबर वन पे है, मोस्ट पॉपुलर इंडियन सॉन्ग्स से दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक था हमारा टॉप टीम और द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सॉन्ग्स जो अभी आप सुने हैं। चलो दोस्तों, हम हर एक को जुमा मुबारक कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। हम एक जुमा के गाना हर एक मुसलमान भाई और बहनों जो हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, हर एक के लिए मैं एक जुमा का गीत आप लोग को सुनाने वाले हो। अल्लाह ताला आप लोग के हर एक खुशी दे, हर एक दुख से दूर करे, हर एक बीमारी से दूर करे। जहाँ पे गुनाह हो चुका है, गुनाह का माफ़ी है, अल्लाह ताला हर एक को माफ़ कर दिया जाए। और हम आप लोग के लिए चलाते हैं, उसके बाद हम चलाएंगे सवाल और जवाब के फरमाइशें।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ।

0: जी हाँ दोस्तों, बारह तरह से वीरागनि और मनदीप जो सही जवाब को दिया है और गाना को मांग किया है द ग्रेट गैम्बलर, जिसमें अमिताभ बच्चन जीना तमन ने काम किया है आशा भोसले के। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। देखा जाए तो मिस्टर अंद्रेई, भाई अंद्रेई जो हमारा करोकती में गाना गाते हैं टेक चांस करो फॉर मत्सी के लिए, ये भी सही जवाब को दिया है नल्त नल्त एक सुई, सही जवाब है भाई और सही गाने को मांगा है, बहुत ही पुराना गाने को मांगा है। और देखा जाए नई कंथिन सेफ एंड फेफ तक के गाना है भाई, हमेशा अच्छा ऐसा गाना मांगते हैं जो हमने सुना ही नहीं है। देखा जाए गीता दत्त, गीता दत्त का गाना है दोस्तों, गीता दत्त ने गाया है और भाई अंद्रेई सही जवाब को दिया है। भाई अंद्रेई प्रोग्राम को सुनते हैं तो लीजिए भाई अंद्रेई आपका जो फरमाइश वाले गाना है जब सवाल और जवाब आपके कानों तक हम पहुंचाते हैं।
1: कितनी सुंदर है रात, जी चाहता है रात सदा यूं ही रहे, कभी सवेरा ही ना हो।

हाँ दोस्तों, रमेश चंद्रा पंडित जो लाइरिक्स लिखा है और म्यूजिक को लिखा है एस आर त्रिपन त्रिपत त्रिपति, और मूवी है राम हनुमान युद्ध 1975 का, जो भाई अंदरई ने इस गाने को मांगा है। एक अच्छा कलाकार है जो हमारा साथ करो कती में गाना गाता है, तेक चैंस करो को फरमासी में। भाई मिस्टर आप सही गाने को मांगा है, और क्या गाना मांगे, बहुत ही पुराना गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम सुनते हैं ऐसे ही सुनते रहना, काफ़ी अच्छे अच्छे गाना है। अभी काफ़ी लोग है जो सही जवाब दिया है, भाई अंदरई थैंक यू जो आप प्रोग्राम को सुनते हैं, फाहो हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखा जाए अगले गाना थोड़ा ऐप पकड़ ले यार। सुनीता बुधाई जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, सदा सुनते हैं, और सही जवाब को लिखा है, वो ना लिखा है, वो लिखी इसमें सुई। ठीक है, सुई भी लिख सके मोहेगा, और सुई तो है नल्थ, एक आँख होते हुए अंधा है वो सुई है, और मांग क्या है, जा रे सुगनवा।

हुआ दोस्तों, जा जा रे सुगन हुआ। अभी आप सुन रहे थे फरमाइश जो दनहाक शहर जहां सईदा पारक है वहां से सुनीता बुधाई सही जवाब को दिया। इतना मोइचर की सुई लिखी से ठीक है सुनीता, ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना। हर हफ्ते आप प्रोग्राम को सुनते हैं, आप बहुत लाइक करते हैं फोन हिंदुस्तानी रेडियो को, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे हमारा प्रोग्राम को सुनते रहना, पूरा टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हो। जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हैं शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं फरमाइश लेके लेवार्ड की तरफ, जहाँ से भाइयों से गोविंद प्रोग्राम को सुनते हैं। वो भी कहाँ है सुई, यहाँ भी लिखा सुई नल्त सही जवाब है। और मांग क्या है मेरे नैना सावन भादो, जिसमें रेस करना हेमा मालिनी ने काम किया है, मूवी महबूबा नहीं जसन सैफन तक का किशोर कुमार की आवाज है। लाइरिक्स हाथ और कलम सिहाई चला गया है, वो है अनंत बख्शी और म्यूजिक एरदी बिरमन के है। ठीक है भैया से भी जो लेवार सुनते प्रोग्राम को, आपके नाम ये गाना करता हूँ, दम लेवार पहुंचा लो चा, सुनते रहना।

0: मन।
1: जी हाँ दोस्तों, मेरे नैना सावन भादो। अभी आप सुन रहे थे और फरमा इस सही जवाब पे सही जवाब दिया था शिव गोविंद भैया, शिव गोविंद जो लेवर्द से है और सही गाने को भी मांगा है, सही गाने सही गाना सही जवाब भी सुई। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई भैयो। आप लेवर्द से प्रोग्राम सुनते अभी और लोग लेवर्द के हम देखा जाए ऐप पे। तो ठीक है हमारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं देखा जाए समंता समंता गाने को सुनते हैं और नो दौरफ में रहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी एक गाना है दोस्तों। अगले हफ्ते वो गाना को मांग किया था लेकिन मैं गाने नहीं सुना सकता था क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं थे। और आज हम समंता उसे मैं दीदी कहता हूँ, समंता दीदी आपका गाना आ रहा है देखा जाए। हमसे होती है मोहब्बत जो तुमको, मूवी मोहब्बत इश्को कहते हैं। निगंदिन फैफन सस्त का करोड़ों का दिल बहलाने वाला द नाइटी मुकेश और आशा भोसले का आवाज़ से भी आप सुनेंगे। म्यूजिक इसका म्यूजिक जो सजा करके बजाया हुआ कयामत है और लाइरिक्स हाथ सिहाई और कलम से जो चलाया गया वो है मजरूत सुल्तानपुरी। हम आप लोग सुनाते बहुत ही पुराना गाना है निगंदिन फैफन सस्त का और चला जाता है समानता की तरफ नो तरफ।
0: तुम इसको खेल

0: जी हाँ दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कि फरमाइश चला गया था समंता दीदी जो प्रोग्राम को सुनते हैं, नौ तरफ से प्रोग्राम को सुनते हैं। अगले हफ्ता का फरमाइश था जो हम पूरा कर दिया। समंता दीदी, आपका फरमाइश हम पूरा कर दिया है। हमसे होती मोहब्बत जो तुमको, मूवी मोहब्बत इसको कहती है। लेकिन फैंस से का ये गाना है मुकेश और आशा भोसले का, वहाँ से भी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को बताना चाहता हूँ, अगले सवाल मेरा तैयार हो चुका है। सवाल आप सुनिए और ऐप भी खुल चुका, आप ऐप कर सकते हैं। लेकिन सवाल का जवाब, सवाल के गाना हम सुनाएंगे मंगलवार को और फ्राइडे को। चले हम आपको सवाल बताते हैं, पूछते हैं। देखा जाए, हाथ है दो हाथ है लेकिन थपोरी नहीं बजा सकते हैं। दो हाथ है लेकिन थपोरी नहीं बजा सकते हैं। कहते हैं अप्लाउज नहीं कर सकते हैं, सेंट वे हांद लेकिन कंदित अप्लाउज है इवन। ओके, दो हाथ है, सही दो हाथ है, ये जो हाथे है ये नेप नहीं है, सही हाथ है लेकिन आप इसे बजा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रारा व तजदात, इसका जवाब आप मुझे ऐप द्वारा दे सकते हैं और फरमाइश मांग सकता है। हाथ है, दो हाथ है लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, उसे अप्लाउज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, थपोरी नहीं बजा सकते, थपोरी नहीं पी सकते। दो हाथ है, थपोरी नहीं पी सकते है, सवाल है। जो सही जवाब सही हल देगा उसे हक बनते ही एक गाने को मांगने के लिए। और भूल मत जाना, आप सब ट्यून है द एवरग्रीन लव, द लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के लिए चलते हैं न्यूज है और कुछ रखलाम है, उसके बाद यूं गया यूं आया, आगे से गया पीछे से चला आया। वेट कीजिए, भी मैं आपके साथ रहूंगी, एक घंटे का प्रोग्राम और है हमारा तुम्हारा साथ, 3 बजे तक रहेगा, उसके बाद मैं भी विदाई लूंगा आपसे। तब तक के लिए हम चलते हैं न्यूज और रखलाम।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: जी हाँ दोस्तों, ये था न्यूज़ और रेखलाम। हम ले चलते हैं आपको फिर से प्रोग्राम जैसे मैंने बनाया था, सजाया था। हम चलेंगे सुरीनाम की तरफ, सुरीनाम की तरफ। दो दो फरमाइशें, तीन फरमाइशें, सुरीनाम को तीन सही जवाब है। देखा जाए तो सीता है, गीता और प्रभा है। ठीक है, हम चलाते हैं सीता सरमक्का से प्रोग्राम को सुनता है, लारिको से प्रोग्राम को सुनता है, और वो भी लिखा है नाल्त। सही जवाब है सीता जी, आपने सही जवाब को दिया है। और मांग क्या है, तुम हो मेरे दिल की धड़कन। फिल्म मंजिल नेकन तक के, जिसमें अमिताभ बच्चन, उसमी चक्रजी और किशोर कुमार की आवाज है। दोस्तों चलो, हम आपको ले चलते दम सर मक्का लारी को के तरफ।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, लारिको वैक से सीता जी प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया था मूवी मंजिल के नेक नसीब का गाना, जिसे किशोर कुमार ने गाया है, अमिताभ बच्चन, मौसमी चक्रवर्ती ने काम किया है, लारिक से योगेश और म्यूजिक सजाया गया है एयर दे बर्मन के। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सुनता रहना सीता जी और ऐसे प्रोग्राम को लाइक करते रहना, हमारा प्रोग्राम हमारा फाहुन रेडियो को सुनते रहना और पसंद भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं वेल खादाख से, जहां से गीता काशीराम प्रोग्राम को सुनते हैं, बाल बनाते हैं, अब कहते हैं हम बाल बनाते हैं, बाल फिर भी कर रहा है इस वक्त, और प्रोग्राम को सुनते हैं अपना अपना जहां पे काम कर रहा है वहां से उसका अपना काम है और काम कर रहा है और प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है गुलाम अली वैक्से वैक्से इस प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद गीता काशीराम के आप प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग किया है तुम्ही जो मैंने देखा है फिल्म मैं हूँ ना शाहरुख खान इसमें काम किया है, सुमिता सेन ने अभिजीत का गाया हुआ गाना है, देखा जाए काफ़ी अच्छे गाने को मांग किया है गीता काशीराम, इस गाने को मांग किया है और लिखा है नल्त नल्त इंद्रदात इस नल्त आँख होते एक आँख होते हुए अंधे है वो है नल्त और सही सही हल आपने दिया है और सही गाने को मांगा है

जी हाँ दोस्तों, ये था वेलखदक से नबी। देखी जाए तो कौन सा है, हाँ गुलाम नबी वह का है। गीता का श्रीराम जो सही जवाब को दिया था और मांग किया था, तुम्ही जो मैंने देखा तुम्ही को जो मैंने चाहा। ठीक है गीता जी, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहे ना। वक्त अक्सर ही गर्म है, बहुत गर्म है और बाल बना रहा है, बार फिर फिकर रहा है लिखलवा, और गाना भी हमारा फाहून को सुन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप फाहून को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वक्त बहुत कम है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फरमाइशें मुझे सुनाना है, मुझे माफ़ कर देना जहाँ तक हम सुना पाएंगे। आज हम सुनाएंगे और उसके बाद मंगलवार के हम आपका फरमाइशें आगे सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं देनाक शहर से। हमारा माँ प्रोग्राम को सुनते हैं, माँ अस्सलाम वालेकुम, और माँ इस गाने को मांग किया है, सही जवाब को दिया है। माँ भी लिखी से सुई, माँ ना लिखी ना सुई लिखी से। ठीक है माँ, सुई भी ना एक ही है और सवाल पे सही जवाब को दिया है और मांग किया है। आदमी मुसाफिर हर एक के लिए माँ इस गाने को मांग किया है। देखा जाए तब नहीं खती सीफन सीफन तक का ये गाना है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। और देखा जाए म्यूज़िक जो बजाया गया है, सजाया गया है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है और लायरिक्स हैगा, लायरिक्स है आनंद बख्शी, जो काफ़ी सिहाई से अच्छी सिहाई से लिखा गया है गाना। हाथ चलाया गया, कलम भी चलाया गया इस पर, और मूवी अपनापन नहीं खनती सीफन सीफन तक के माँ हर एक के लिए इस गाने को मांग किया है।

जी हाँ दोस्तों, माँ दरहा शहर से प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है माँ। ये गाना आपके नाम और आपने कहा हर एक के लिए ये गाना माँ ने मांगा है, पूरा फाहौन टीम के लिए और जो जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं हर एक के लिए माँ ने इस गाने को मांगा है। मूवी अपनापन निकलती जीव नसीफन देखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो म्यूजिक है, आनंद बख्शी का और लाइरिक से पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। माँ आपके गाना बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बना रखे और सदा इसे प्रोग्राम को सुनना माँ। ठीक है माँ, तब हम चलते हैं फोर्स कोतन के तरफ जहाँ से शांता शार जो कोहबीर प्रोग्राम को सुनते हैं सही जवाब को दिया है और उसने भी लिखा है सुई नाल थे। ठीक है, सुई है, हम लोग तो सुई कहते हैं ना, कहते हैं सुज्जा और सुई और नाल सब एक ही है। बोले एक सुई के आँख ही है लेकिन अंधा है, वो क्या देखता है ना, और यही है एक आँख होते हुए लोग एक आंख होते हुए तो भी अंधा है, वो सुई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गाना मांग किया है शांता ने, क्या अच्छा गाना को मांगा है, नंदा कपूर की आवाज़ है और गाने है, गाना का है ये दुनिया बना के और बना के फिर चलाना। मूवी कनकन में है, भगवान निकन तीन द्रियन शस्त का है, नंदा कपूर की आवाज़ है, म्यूजिक है शिवराम का म्यूजिक है, लायरिक्स आएगा भरत फयास, घर भरत फयास का ये जो लिखा गया है लायरिक्स इस लिखा है और बहुत बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है। चलो हम आपके नाम करते हैं एकदम फोर्स को उतन तक पहुंचाते हैं गाने को और बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं शांता और ऐसे ही सुनते रहना और हम लोग के अच्छा लगते हैं। हम नहीं हैं, हम हैं फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो, हम चुन हैं द एफ अगेन लव फाहौन हिंदुस्तानी पे।

0: समझे तो रथिए चले नहीं।
1: जी हाँ दोस्तों, क्या गाना है, महेंद्र कपूर की आवाज अभी आप सुन रहे थे और शांता सार्जु को हबीर जो फोर्स कोतन से प्रोग्राम को सदा सुनते हैं, फहन को सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांगा है। अगर टाइम देखा जाए तो हालफ बैना फाइव फॉर हालफ दिल हो चुका है और इस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा गाना आपने मांग किया है। फ्राइडा हो चुका है, वीकेंड आ गया है, हर एक को फैन वीकेंड हो। और अभी आधे घंटा हम रहेंगे आपके साथ, फरमाइशें पूरा करेंगे। काफ़ी लोग हैं दोस्तों, हम सोचते हैं आधे से ज़्यादा को मंगलवार को हम उसका फरमाइश पूरा करेंगे। तब तक के हम चलते फिर से एक बार फोर्स को उतन, जहां से रेमन भी प्रोग्राम को सुनते हैं, रेमन को हबीर, और वो भी सही जवाब दिया है। चीटिंग तो नहीं किया ना संत, आप दो है ना, एक एक पार है ना, हमारे बहन है और हमारा स्वागरी है एख्त में, और तो लोग चीटिंग थोड़ा करे हैं, चीटिंग मत करना। और मैं तो नहीं, मैं नहीं सोचता का आप चीटिंग किया है। रेमन भी जानते हैं कि एक आंख होते हुए अंधा है तो वो क्या है, उसने भी लिखा है सुई है और मांग किया है मुझे तुम मिल गए हमदम। देखा जाए इस गाने को गाया है द क्विंग लता मंगेशकर, इस फिल्म में काम किया आशा परेख, जौहर जौहर महमूद मुखर्जी, मुखर्जी ने इस पर काम किया है। देखा जाए मुखर्जी, आशा परेख, परान मदनपुरी, महमूद। और चलते हम देखते हैं मुझे तुम मिल गए हो मूवी लव इन टोक्यो, नेकंती सेशन सेस्ट का है यार। और चलो हम सुनाते आवाज द क्वीन यार, एक ही था जो ये सब गाने को गाया है और वो है लता मंगेशकर की आवाज़। हम आप लोग को सुनाते हैं और ये चला गया है फोर्स को उतन के तरफ, जहाँ पे रेमन भी प्रोग्राम को सुनते हैं। ऐसे ही सुनते रहना और पसंद भी करते हैं ना, सुनते रहना। हम लोग बहुत खुश है आप लोग से, पूरा टीम हमारा बहुत खुश है कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और ऐसे सुनते रहना।

जी हाँ दोस्त, अभी आप सुन रहे थे मुझे तुम मिल गई हमदम, लता मंगेशकर की आवाज़। अभी आप सुन रहे थे मूवी लव इन टोक्यो, सस्त का है और शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और हसरत जयपुरी का लायरिक्स है। ठीक है दोस्तों, ये गीत जो मांग किया गया था वो है फोर्स को उत्तन करने वाला रेमन कोहाबीर, जो प्रोग्राम को सुनते हैं, हर हफ्ते प्रोग्राम को सुनते हैं, फाहौल को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया, सही गाने को मांग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हो, शुक्रिया, डंक वेल। हम नहीं उससे सिर्फ कहते हैं, हर एक जो प्रोग्राम को सुन रहा है और मेरा साथ दे रहा है, फाहौल के साथ दे रहा है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। और ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना, काफी दूर दूर से लोग सुन रहा है, स्पाइन से सुन रहा है, लेकिन हम सोच रहा हूँ इतना है कि मैं अगले हफ्ते मंगलवार को हम आप लोग के फरमाइश से पूरा करेंगे। जर्मन से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, सूरीनाम से बहुत लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं, स्पेन में मार दिन्स दखाएक योली फरमाइश तो लोग के कान तक हम पहुँचाएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, रॉय मंगली जो प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया, उसने भी कहा सुई, ए भाई सुई, भाई सुई, ठीक है, हमें लिखे से भाई सुई, तो ठीक है भाई, इस नाउथ, ठीक है भाई। और मांग किया है, बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है, तेरी आंखों के सिवा, तेरी आंखों के सिवा क्या है दुनिया में, और दुनिया में कुछ नहीं है भाई रॉय, तेरी आंखों के सिवा और कुछ है यार, बाकी क्या गाना को मांगा है। और हमारे साथ दे रहा है करो खुरूप में तेरे चांस में, हमारा साथ गाना गा रहे हैं, अच्छे गाने को गा रहा है, ऐसे ही हमारा साथ देना भाई रॉय। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गाना आपके घर तक, आपके कानों तक हम पहुँचा रहा हूँ,

जी हाँ दोस्तों, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। रॉय मंगली इस सही जवाब को दिया था और इस गाने को मांग क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद हो रॉय कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं। इतवार को हम आपको देखेंगे और जो भी आना चाहता है हर इतवार को हम कराओका करते हैं शहर में है। और जो भी गाना चाहते हैं अनमेल्ड कर सकते हैं क्योंकि 6 सितंबर का एक जबरदस्त शो है जहां पे हर एक कोई गाना को गा सकते हैं हमारे साथ। आप अनमेल्ड कर सकते हैं नोसेस फेदरी एनुअल एन द्रिदित्वी पे आप सब अनमेल्ड कर सकते हैं फॉर 6 सितंबर एतवार है। 6 सितंबर के हमारा साथ देगा। जो भी गाना चाहते हैं मुझे कॉल कीजिए, अनमेल्ड कर सकते हैं। और ऐसे ही हर एक जो गाना चाहते हैं अनमेल्ड कीजिए। तार का नंबर है 9 फेदरी एनुअल एन द्रिदित्वी पे मुझे कॉल कीजिए और अनमेल्ड कर सकते हैं फॉर 6 सितंबर के जबरदस्त शो है, कराओके फेस्टिवल है, आप अनमेल्ड कर सकते हैं। तब तक के लिए देखा जाए तो हम चलते हैं कौन सा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो भाई बिरबल है सुरेन बिरबल, जिसे बिरबल से हम जानते हैं, हमारा कोलिखा है, फाहुन रेडियो का एक उम्रूपर है जो घर पे है और काफ़ी बीमार नहीं है और उस तरीके है केल और खोखी है, थोड़ा सा ठंडा लग रही है उसे और घर पे है। और कहते हैं अनिल, मैंने पूछा ए भाई आपके लिए कुछ सुना दो आपके लिए एक गाना। वो खुद ही एक गाने को मांग किया है और जबरदस्त गाने को मांग किया है और वो अपने प्यारे प्यारे धर्मपत्नी के लिए मांग किया है, यानी कि हमारे भौजी के लिए रीना के लिए गाने को मांग किया है। देखा जाए जीवन से भरी तेरी आंखें मूवी सफर नेकंतीन सैफन तक का है और किशोर कुमार की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है जो सजा करके लाया है। लायरिक से इंदिवर के लायरिक से हाथ और कलम से चलाया गया है। भाई बिरबल आपके गाना आ रहा है और मांग किया है भौजी के लिए, रीना के लिए मांग किया है। भौजी आ रहा है प्यारे प्यारे बिरबल ने आपके लिए बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है। ठीक है बिरबल, आ गाना आ रहा है।

0: भरी।
1: जी हाँ दोस्तों, जीवन से भरी तेरी आंखें। अभी आप सुन रहे थे क्या गाना है, मूवी सफर निकंदन सैफन तक का है और किशोर कुमार की आवाज थे, म्यूजिक कल्याण जानन जी इंदिवर का, ये हाथ और कलम जो चलाए इस गाने को लिखने के लिए। भाई बीरबल ने इस गाने को मांग किया था प्यारे प्यारे हमारे भौजी के लिए, रीना के लिए। इस गाने को मैंने सुनाया है भाई बीरबल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत ही अच्छा उम्रूपर है यार पाहुन के, और बहुत अच्छा गाते हैं। अगले हफ्ते हम उसका गीत आपको ज़रूर सुनाएंगे। मंगलवार को हम चलाएंगे गीत जो हमारा सुरनामी गाना गाया है और हॉलैंड में गुयाना में तीदात के गाना हम सुनाएंगे मंगलवार के दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, देखा जाए तार में सुरीनाम हाईवे से, हाईवे से प्रोग्राम प्रभा जी प्रोग्राम को सुनते हैं और नल्त लिखा है सुई यानी कि सुई है, सही जवाब को मांगा है, सही जवाब को दिया है और गाना को मांग किया है। देखा जाए जब चली ठंडी हवा, दो बदन मूवी दो बदन आशा भोसले का आवाज है, म्यूजिक देखते रहे रफी शकील बदायूनी का हाथ और कलम चलाया गया है। ठीक है परबाजी, आप प्रोग्राम को सुनते हैं, मांग किया जब चली ठंडी हवा, आपके नाम आ रहा है एकदम सुरीनाम अच्छा 8000 किलोमीटर हम तक के गाना पठा लो। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जब चली ठंडी हवा, अभी आप सुन रहे थे मूवी दो बदन, और चला गया है दम से हाईवे, जहां से प्रभा जी प्रोग्राम को सुनते हैं, और सही जवाब को दिया प्रभा जी आपने, और आपका गाना मैंने आपके कानों तक पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, देखा जाए घड़ी की तरफ, देखा जाए थ्री हो चुका है, यानी कि दो तीन गाने के बाद हम जरूर विदाई लेंगे आपसे, और फिर मिलेंगे मंगलवार को। मंगलवार के हम काफ़ी गाने आप लोग के सुनाने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमारा है सुबह का प्रोग्राम, हम काफ़ी गाने काफ़ी फरमाई से आपको सुनाऊंगा। यहाँ पे देखा जाए भाई, जो मखेंतास मुझे ऐप कर रहा है वो भी ऐप पे है, और कह रहा अनिल अपना गाना सुना दे जिंदगी क्या है। ठीक है भाई अनुना, भाई अनिल जो भाई अनोनिम रहना चाहता है उसका नाम मैंने रख दिया है अनोनिम। ठीक है, मैं आज नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि हो चुका है बैना थिंग फोर, हम मैंने कहा ट्वेंटी फोर थिंग फोर हो चुका है भैया कि अब ना हो पाई, क्योंकि न्यूज़ से बयान में और मुझे आने और जाने के भी एक वक्त है, और मेरा हिस्से का प्रोग्राम अभी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं एक गाना और चलाने वाला हूँ। देखा जाए सही जवाब को दिया है रुदि गोली ने, और मांग किया है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। भाई गोली पूरा प्रोग्राम को ये सुना है, हर हफ्ता हम लोग फाहौन को सुनते हैं, रोज ये फाहौन फाहौन पे चुने, और हमारा प्रोग्राम हर एक का प्रोग्राम फाहौन को ये बहुत पसंद करता है, और मांग किया है सही जवाब को दिया है नाल्थ, इसका जवाब दिया है नाल्थ है सुये, एक आंख है फिर भी अंधा है। ठीक है भाई गोली, भाई रुदी हमारा साथ भी आ रहा है, गाना गा रहा है, और एक हिस्सा बन चुका है हमारा ग्रुप का, और बहुत ही अच्छा है भाई रुदी ने, धीरा है ना भाई रुदी, आप प्रोग्राम को सुनते हैं ना, काफ़ी अच्छे है यार, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, आशिकी राहुल रॉय अनु अग्रवाल इसमें काम किया है, और देखा जाए ये भी बता दूँ यार के हाँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अनुराधा पौलद्वार कुमार शानू रानी मालिक के लाइरिक सही यार। ठीक है आपके गाना आ रहा है,

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: जी हाँ दोस्तों, ये था न्यूज़ और कुछ रिक्लाम जो भी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एक आखिरी गाना जो मैंने चलाया था वो था रूदी गोली का, जो सही जवाब को दिया था, सही गाने को मांगा था। यहाँ से हमारा ख़त्म हो चुका, हमारा हिस्से का जो प्रोग्राम थे ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से हम कहते हैं आप लोग के फिर मिलेंगे मंगलवार को। आने और जाने के लिए एक वक्त होते हैं, जहाँ तक मेरा आवाज़ पहुँचा है, जितने लोग हमारा प्रोग्राम को सुनाए, हम सबके धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुनाए, फाहोन रेडियो पे आप सब चुने हैं और ऐसे ही हमारा प्रोग्राम को सुनते रहना। आने जाने का एक वक्त होता है, मुझे इजाज़त दीजिए और यही मैं कहता हूँ। फिर मिलेंगे मंगलवार को। राम राम, अस्सलाम वालेकुम और बाय बाय। स्वाई स्वाई, मंगलवार के मिलेंगे आपसे।

पंछी बनो उड़ती फरो मस्त गगन में। ये सुंदर सा गीत हम सब मिलकर सुने, फिल्म का नाम चोरी चोरी, लता जी के आवाज में, लेखक है हसरत जयपुरी और म्यूजिक शंकर जयकिशन जी के साज में।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

पीएस रावत, नहीं, म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत। प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ, दिल में

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: सुनने को
1: सारेगामा कारवां द परफेक्ट गिफ्ट
0: सुनने के लिए बहुत उकसत रही आप भी। आपने फोन करके और कहा तो यहाँ से आपके लिए भी पेश हो रहा है।

धुरंधर, फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सायारा से।

मिथुन फिल्म सैयारा से निकाला गया है। मिथुन लेखक है ये गीत का और सिंगर है अरिजीत सिंह। ये भी एक बहुत सुंदर फिल्म है, आपने देखे होंगे तो जरूर से देखना। कभी काल के ये सब पिक्चर जो है बियोस्कोप में भी इसको रिलीज किया जाता है यहाँ हॉलैंड में, तो जरूर से वक्त बनाकर याद कर देखना। बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, पिक्चर देखना कुछ अलग है, और घर पर बैठकर देखना ये भी एक खास है।

इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

कुदरत के है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया की सरसमी पर किस्मत को आजमाना, ये प्रेम का जहां है हर किसी ने भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आधा बरसो बजकर 2 मिनट बीत गया है, फा और हिंसा रेडियो पर आप चुन है, शुक्रवार है, अगस्त के 7 तारीख हो गया है। पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम यहाँ से आरंभ होता है, ये प्रोग्राम पूरे 6 बजे तक जारी रहेगा। परिवार घर में दुख है, दुख में हम साथ देते हैं, और जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई पेश हो।

प्रोग्राम गीतों का संग्रह आरम्भ होता है और अब से लेकर सारे जावेद लुक नीले जिले गीतों के साथ आपका दिल बहलाऊंगा, आपके साथ दूंगा और साढ़े चार पाँच के अंदर आइटम बयान जो रहेगा आज शाम को वो है आप। हर गीत जो आपसे शुरू होता लगभग आधे घंटे तक मैं पेश करूंगा। प्रोग्राम में पूरे छः बजे जारी रहेगा। प्रोग्राम में छोटे छोटे खबर, फील बरिख्त, मौसम के समाचार और स्पोर्ट बरिख्त आप सुनते रहना। हर एक काम जो आपके रेडियो के सरे कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से नोल सीफ तक 365 2828 फिर सीफ हमारा तार का नंबर है।

छुट्टी का समय है, अगर आप हॉलैंड से बाहर जा रहे हो फकांसी मारने को, तो आपको मैं ही कहना चाहता हूँ, फेन फकांसी सुहाना सफ़र। अगर आप हॉलैंड से बाहर जाते हो, अगर आप हॉलैंड देश में फकांसी मनाने के लिए आए होंगे, तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम कहता हूँ फाहुन के टीम की ओर से। शुक्रवार है, वीकेंड भी है दोस्तों, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। वैसे तो हॉलैंड देश के सबसे बड़ा बाजार जो है अक्सर मार्ग खुला हुआ है, सामान खरीदना चाहते हो तो जा सकते हो, जो एकदम है आपके सारा संभाल के रखना दोस्तों, इसलिए कि बाजार पर बहुत से सैकड़ रोलर्स घूमता रहता है।

बबल ट्रक है दोस्तों, लोग जो ये काम करता है उससे भी जरा बच के रहना। घर में घुस जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, किसी ने दरवाजे पर बैल किया अनबैल किया तो खौरदेन हटाकर देख लेना, अगर वो कहते हैं कि दरवाजा खोलो कुछ बात करने के है तो खिड़की थोड़ा से खोल कर वहीं से बातचीत कीजिए, दरवाजा मत खोलिए। तेरे लोग जब अंदर खुद जाते हैं दोस्तों तो बहुत प्रॉब्लम करता है। हर एक काम जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह आपके पास है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 0 3 5 2 2। फिर सिर्फ हमारा तार का नंबर है, पूरे 6 बजे तक मैं स्टूडियो में रहूंगा, उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना, खास करके उसका न्यूज बरेक्टर जो है आप जरूर सुनते रहना। शाम भी खूब है, अलका, मिस्टर सानू एंड उदित नारायण।

फिलक बरगद हिट देवगढ़ और सबसे पहले मौसम के समाचार। Boven het zuiden schijnt de zon, elders zijn veel wolken aanwezig. In het westen en noorden valt daaruit nog een enkele bij. Er staat verder maar weinig wind. Je weekend heeft, je kan het niet waar het is, tot maximum temperatuur 26-26 graden rega. Uske baad zondag rabiwar ko 29 graden. सोमवार को वीकेंड के बाद सोमवार को 26, मंगलवार को 24 और बुधवार को 30 ग्रेड होने वाला है। तो मौसम तो अच्छा है, बारबेक्यू का समय है, लेकिन अगर आप बारबेक्यू के कारोबार करेंगे तो शराब फैल से करना दोस्तों। आप जानते हैं इस झोड़ा का मौसम में आग बहुत जल लग जाता है। तो अब की बार बहुत दिनों के बाद, जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद किसी से मुझे प्यार है। वाह, पॉपुलर रोमांटिक हिंदी सॉन्ग।

प्यार हो मिस्टर सानू, उन दिनों में रसो कुमार सानू का हर एक सॉन्ग एक हिट, इन दिनों में भी है, लेकिन उन दिनों यार नीखन तक में जितना गाना पेश किया है मिस्टर सानू ने, ये सब एक हिट था। इसलिए कि किशोर कुमार के बाद कुमार सानू ये सॉन्ग्स वायरल जो है अपन हाथ में ले लिया और अच्छी तरीका से अपन गीत भी पेश किया है। आए हो मेरी जिंदगी में, आए हो मेरी जिंदगी में, तो क्या क्या करना है उदित नारायण के मीठी आवाज़ में।

मेरा चांद जाना। क्या बात है दोस्तों, घड़ी को देखता हूँ तो एक मिनट बीत गया है 4:15। आइटम को शुरुआत में करता हूँ दोस्तों। आज शाम का आइटम जो है वो है आप। हर एक गीत जो आपसे शुरू होता लगभग आधे घंटे तक मैं पेश करूँगा। तुरंत चला जाते हो हैंगलो शहर, हैंगलो कोर, वहाँ पर रहता है श्रीमान चांदर रघुनंदन और उनका जीवन साथी नैली। चांदर की तरफ से नैली के लिए बड़े प्यार और दुलार के साथ ये सॉन्ग।

आप आए फिल्म आप आए बाहर आए का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना श्रीमान चांदर रघुनंदन की तरफ से जीवन साथी नहली के लिए इस वक्त शेता बार बकी में कौन दालक अब की बार आपके करीब, जी हाँ आपके करीब हम रहते हैं मुंजबोध के तरफ से माला के लिए।

0: बस बस बस आपके करीब आपके करीब हम रहते हैं श्रीमान मून जी बोध की तरफ से जीवन साथी माला के लिए।
1: छोटा सा स्पॉट बोले थे दोस्तों, जॉन फानस के बंस को बना है कासस्थान का, उससे पहले वो क्रिकलन और अग्नि का बॉन्स कोस था। और फोर्थ बरेक्ट में ढूंढता हूँ तो ईफा भी तेलुक बहुत गुस्सा में है और कहता है अगर खियानो इन्फांटिनो अगर कोशिश करेगा आंदील बेचने को फीफा का, तो यूरोपीय से फुटबॉल बहुत है जितना कॉम्पिटिशन है सब रोक देगा। आप जाते बीते हुए दिनों में बाहर आया खबर कि फीफा आम डीलर बेचना चाहते हैं और एक बदरेफ बनाना चाहते हैं, तो वो अभी स्टॉप हो गया, लेकिन अगर ये काम जारी रखेगा तो यूरोपीय से फुटबॉल बॉल और साथ ही साथ शायद अमेरिकन से फुट मिले अमेरिकन से फुटबॉल बॉल जो है सभी इस बात से नाराज है। एंड इसी कल के बाद है दोस्तों, ओलंपियाकोस से नल नल खेला है और दैर दर ऑन द चैंपियंस लीग में अभी तलुक को हासिल है। और स्पॉट बरेक्ट ट्वेंट, जी हाँ दोस्तों ट्वेंट भी DRC से मुकाबला किया और स्लोवाकिया का DRC है जी, उन्हें 6-0 को से जीता है कॉन्फ्रेंस लीग का मुकाबला। आयात भी सेलबॉर्न को 3-1 से जीता है और डेदरोंद कॉन्फ्रेंस लीग का खेल जो था, तो जब मैं देखता हूँ तो नीदरलैंड से फुटबॉल जो क्लब फुटबॉल है इन दिनों में अच्छा काम कर रहा है, यूरोपीय और कॉन्फ्रेंस लीग साथ ही साथ चैंपियंस लीग में। तो अगर जो आप देखते हो शुक्रवार है तो आप जानते हैं एयरडिविजी में फुटबॉल का मुकाबला रहता है, तो SC कांबीर एक्सेलसियर से खेलेगा। उसके बाद कल जब शनिवार है NEC टेलस्टार गुहत ईगल्स विलम दुई PSV 49 सितार आसर आडो डेनहा, सोमवार रविवार को स्पार्टा रोटरडाम फेनोर टेक्सवॉलर आयाक्स FC क्रोनिंगर FC इतरेक्ट और FC हेरफेन FC ट्वेंट से मुकाबला करेगा। जो एयरडिविजी है दोस्तों रिकल्स नए रिकल्स से आया है और कहता है एक बैटर एक बाल जो बाहर चला गया तो उन्हें बिना 5 सेकंड चाहे बिग डे के अंदर तो बैटर स्पेल भी देखा गया है और एक दो और नया रिकल्स आया है, जब मैं सभी रिकल्स पढ़ूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। वैसे तो भी एक बाल जो फ्रेयर ट्रैप है तो उन्हें 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर जो विसल है कभी कभी जो विसल होता है तो 1-2 या 3 मिनट लोग धीरे धीरे स्पेलर चलता है तो लाइन से बाहर जाता है, यह बात अब नहीं रहेगा। जो बॉन्ड है यहाँ का एयरडिविजी का तो कैन फेबी का वो कहता है कि बिना 3 सेकंड ये विसल हो जाना चाहिए। यह तक था छोटा सा स्पॉट बरेक्ट, आपको पहले भी कभी देखा है आशा रेसक में रहती है आशा के लिए।

तुम हसीने मैं जवा, आपको पहले भी कभी देखा है, आइटम चल रहा है दोस्तों, और कजरा मोहब्बत वाले मैं बीच में पेश करता हूँ, और एक फरमाइश है श्रीमान आंद्रेई राजकुमार के लिए।

आंध्र ही राजकुमार के लिए कजरा मोहब्बत वाले। दोस्तों आपका आइटम जो चल रहा है उसका समाप्त होने के आया दोस्तों, इस समय जो आधे घंटे का मैंने कहा था एक आखिरी सॉन्ग चलेगा जो आपसे शुरू होता है, उसके बाद रिक्लाम न्यूज़ ब्रेक आप सुनेंगे।

तूने तूने सनम जाने मुझे हो लगा है। जितेंद्रा और मुमताज दोनों दोस्तों का फिल्म का सॉन्ग भी आपने सुना, टिक टिक टिक मेरा दिल डोले, फिल्म हम चोली का सॉन्ग अभी चला है। अब की बार दुनिया में, जी हाँ ये सभी के साथ होता है, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। सही बात है, आशा एंड आरजे बर्मन। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ?

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। 5:16 बिट गया 16:05। आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार चला जाता हूँ श्रीनाम देश, वहाँ पर नोट पॉलर दाम पर रहता है या रहती है मेरी छोटी बहन लीला द्वारका। लीला स्पेशल फॉर यू।

सॉन्ग तो रुक गया है, कोई बात नहीं, मैं अभी इन्हें सेलेक्ट करके रखता हूँ। मुश्किल है जीना, दे दे वो हसीना, कांची रे कांची फिल्म, हरे रामा हरे कृष्ण का सॉन्ग अभी प्रोग्राम में चल रहा था।

हीरो का पुजारी किशोर कुमार एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों की मिठी आवाजों में कांचा रे कांचा और कांची रे कांची श्रीनाम नोट पॉल दाम के रहने वाली मेरी छोटी बहन लीला द्वारका के लिए स्पेशल ये सॉन्ग पेश था। फाहोन हिंदुस्तान रेडियो पर आज चुनहर प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है।

थोड़े चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। कुछ पल बैठा करो माँ बाप के साथ, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के साथ, सब कुछ नहीं मिलता है मोबाइल के साथ।

0: कोरा कागज था मन मेरा, इसमें लिख दिया नाम तेरा। क्या बात है दोस्तों, एक फिल्म देखी थी ध्रियन सीफन तक में रिलीज हुआ, धर्मेंद्र और रेखा दोनों इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है इस फिल्म का, ये गीत बहुत हलचल मचाया दोस्तों। जितना रेडियो स्टेशन था उन दिनों में श्री नामदेश का हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन, वो एक बार दिन में जरूर 3 या 4 दफे एक गीत पेश करता था। कौन सा गीत है आप खुद सुनकर और अजमाइए।
1: ये लड़की है ना, इसे मैं बहुत है।
2: अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने ऐसे तो नहीं कहा।
0: क्या आपको मालूम हो गया अभी? नहीं
1: सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनों, अरे मदन भाई
0: धर्मेंद्र और रेखा का कमाल।

हाय रब्बा रब्बा आँख मेरी लड़ी। दोस्तों रेंज वेर वहाँ पर कैरमेस है और एक नौजवान आप जानते हैं जो टाउ ट्रैकर है, जिससे एक टाउ है जो खींचिए जो प्राइस उसमें है तो प्राइस आपको मिलता है। तो एक लौंडा है वो दो तीन टाउ पकड़ के खींचा और वहाँ का जो एक अनार था कैरमेस टैन का, तो वो सिपाही को तार किया। और जब वहाँ पहुँचा तो ये नौजवान एक नेट पीस एक स्पील खुद पिस्तौल सिपाही के ऊपर रख किया। सिपाही जब ताकत जब देखा है ये नेट पिस्तौल है तो नौजवान का हाथ पकड़ के और पिस्तौल हाथ में से निकाल लिया है और उन्हें ले गया है पुलिस ब्यूरो। पता नहीं आगे बात क्या हुआ है क्या नहीं, फिर भी ये भी होता रहता है। दोस्तों अब की बार आया सावन झूम के का टाइटल सॉन्ग।

सावन झूम के दोस्तों डेल्फ्ट, डेल्फ्ट में जो मंडेला लान है या मंडेला स्ट्रात में है, मंडेला स्ट्रात है, वहाँ पर वहाँ से मेलिंग मिला सिपाही को कि इन बड़ा हुआ है। जब सिपाही पहुँचा मकान पर तो सिपाही को मिला है 1.2 मिलियन सिखा रहता है, जो शस्त्र कैसे पाकिस इलेखाल सिखा रहे थे, सिपाही 10 लाख में ले लिया है। खास बात यह है कि लगभग एक हफ्ते की बात है कि उसी शहर डेलस में सिपाही ने हाफ मिलियन सिखा रहे 10 लाख में लिया था, वहीं पर भी एन ब्रक हुआ था। तो देखा जाए कि जिन लोगों का सिखा रहा तो उन्हें भूतू मिलता है या नहीं, इसलिए कि हॉलैंडेस में ये सब रोजगार जो लोग करते तक बहुत कम भूतू मिलता है। फिर भी इलेखाल सिखरत मिनाही है, लोग फिर भी ये काम करता रहता है। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या बात है, किशोरदास नाइटिंगेल लता, पद्मश्री मोहम्मद रफी एंड माइटी मुकेश।

मोहब्बत के मजदूर दुनिया में कितना अजीब है, मोहब्बत के मजदूर दुनिया में कितना अजीब है। जब पास है तो लोग जलते हैं और दूर है तो दिल जलता है। क्या बात है। पर आप जो है दोस्तों घड़ी को देखता हूँ तो 9 मिनट बाकी है इस वक्त 6 बजने में। अभी कुछ देर के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना स्टूडियो में आ गया है और 5 बैठल मैंने कहा है कि आदमी हरदम बगड़े बैठे है वहाँ 5 बैठल है वो 12 स्टूडियो में हम लोग इन दिनों में फाउंडेशन के 2 स्टूडियो है, 1 बड़ा स्टूडियो 1 छोटा स्टूडियो। तो ये बड़का मन है जाके 1 बड़ा स्टूडियो में बैठे है और हम छोटा मन छोटा स्टूडियो से हम प्रोग्राम बनाते हैं।

0: Meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: बस दोस्तों, आज हम आप लोग को कुछ गजल सुनाएंगे। कितने दिन हो गया हमने कुछ गजल गीत आप लोग को नहीं सुनाए हैं, और आज हम आप लोग को कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे। दोस्तों आओ मिलकर पहले ये गीत को सुना जाए। इन आंखों के मस्ती क्या है, दिल चीज क्या है दोस्तों, और ये दिल चीज क्या है, आंखों की मस्ती क्या है, आओ मिलकर सुना जाए। आ जा रे ओ मेरी।

0: दोस्तों 6 बज चुका है। अभी आप लोग को हम एक मिनट मान सुरीनामी न्यूज को आपको सुनाएंगे। अभी आप लोग हमारा कोलेखा साथी राजन द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है। अभी एक दो मिनट बाद हम अपना सुरीनामी देश को शुरुआत करेंगे।
1: या तो कब से रूठ गई है काश गमों को भी

ये और बात है, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल मनहर उदास का। ये गाया हुआ गजल सॉन्ग है, ये और बात है, ये और बात है। को कहते हैं मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, तसल्ली हुई चलो पहचानते तो है, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएंगे जरूर, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएंगे जरूर, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको, कौन मुझको चाहेंगे। हम चलते हैं अगला गजल की ओर। ये गजल है ना, गीत है ना, कोई मूवी अलग अलग का किशोर जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

ऊंच नीच कला न जाने जात सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहून के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

0: दोस्तों आज है फ्राइडे, शुक्रवार है और शुक्रवार जो है तो आप जान गए हैं करीब 6 बजे हमारा प्रोग्राम हम शुरुआत करते हैं और यानी कि 30 मिनट हो चुका है 6 बजने में, थोड़ा से लाती हो गया लेकिन फोर ब्रेनिंग भी करना पड़ता है दोस्तों, रिक्लाम की काम भी बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है तो समय तो दौड़ते हैं ना। तो आपको हम बता देते हैं अभी आप लोगों ने राजन द्वारका का प्रोग्राम को सुना है, उससे पहले आप लोग अनिल सरजू के प्रोग्राम को सुना है और यहाँ से आप लोग हमारा प्रोग्राम को सुनेगा।
1: तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है आज मुझे।
0: दोस्तों आज भी हम फेसबुक के माध्यम से और यानी कि ऑनलाइन हैं। अगर या आप हमें देखना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं तो आप लाइव आ सकते हैं और हमारा प्रोग्राम को देख सकते हैं। जैसे भाई टोनी इसरी आ गया है और वो भी हमारा प्रोग्राम को सुन रहे हैं बड़ा जोर शोर से। तो सोनी जी, टोनी जी, आपको हम यहाँ दनहाख में स्वागत करते हैं अलमेरे शहर से। हमारे प्रोग्राम में आपने भाग ले लिया है, ये है टोनी इसरी जी, नमस्कार हो। तो हम तुरंत बढ़ते हैं अपना देश और विदेश की समाचार की ओर। हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, तो बातचीत क्या है हमारी जनता? वेनेजुएला का कहते हमारा सूरीनाम देश के वेनेजुएला जाने हैं, कुछ दिन हो गया है वहां पर अर्थक्वेक हुए।

तरनाम से यूरोपा में जा है। हाँ तो धर्मेंद्र वेलकम। तो बताए गए हैं धर्मेंद्र कि सरनाम जैसे को स्लोई पुरुत जो नदमी शिकारी कार खेले जंगल अंगल जा है तो लो जाने रस्तो कैसे बोरो करके हिया जा है हुआ जा तो ऐसे सबन कोकाइन रूत बनाई से फान पारामारी बो सुरीनाम नार है यूरोपा यहाँ लिखा गया है हमारी जनता। तो हम बोली बताई वेनेजुएला के हुआ के रखेरिंग बोले है गा अंदर देल है जो इंटरनेशनल स्मोकल रूट है फेनेजुएला के वो जा है फिया सुरीनाम से फेनेजुएला के रिसर्च बोले है गा बोले जितना क्रिमिनल और खानी साक्षी है। हाँ बोले जो उनके समान अपहरोल्ड बा जो उनके पकड़ी से बोले है गा दी फॉल्कंस हेड अंडरसुक बोले उस सब खबरों के मार्क करता क्लांड सिटी द लैंडिंग्स बान इन द स्टार्ट अनजोवाटिगुल में वे को लैंडिंग्स बान है हुआ से समय प्लेनों उड़ावत रहा पूरिया से नाना और बोले है का बेड ऑपरेशन बोले आठ गोल लीडर के सबन पकड़ी से का बड़का और खानी सांसी के वेनेजुएला में बोले जेकर पास भैया ओ तो मोई मोई मिलल है बंदूक मिलल है कम्युनिकेशन अपराट्यूर्स मिलल है एंड अंदर खुदरन सब असलाख ले ली से और बोले इलीगल लैंडिंग्स बांध भी पाई से और बोले ऑन द सुकर्स बोले है ये सब ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होवत रहा और बोले सब ऑन क्लार करी से और रूतराफिया सुरीनाम भैया यहाँ बताए गए फोल्कस फेनेजुएलंस ऑन द सुकर बोले फरफूर द ऑर्गेनाइजेशन बोले कोकाइनवा बोले फेनेजुएला से ले जात रहा गयाना गयाना से ले जात तरह सुरीनाम देश दस वेनेजुएला गयाना के बगलिये में बा तो अपन प्लेनुआ में कोकाइनवा ले तरह गयाना इंग्लिशमान के देश में तो हुआ से आवत रहा सरनाम में और सरनाम से पूरिया जात रहा यूरोपा के बाजार में ना दनहाक के बाजार में यूरोपी से मरक पे जात रहा। बोले यही हैगा स्मोकल रूट जो वेनेजुएला से कोकाइन जा है यूरोपा में दोफन मिले हुन एन बस्तिया में बराई कंजे यूरोपा में आया भैया तब हुआ एन बस्तिया में है तो यूरोपा में सब इधर उधर बोले बिचाई शुरू हुए हैं तो एकर बारे में फिर वेनेजुएला के ऑथोरिटेटन ऑन मांतल कैसे को बड़का और खानी सासी के जो इंटरनेशनल ड्रग्स सबन यानी कि पठावत रहा यूरोपा में ऑन सुख मोख लगे मीड फरदाख्तन एंड इंटरनेशनल फर van het netwerk wordt voorgezet abbis ab hun door ook hoge hai ki aur ka hai ekar bare mein to ye hai Venezuela Guyana aur Suriname se cocaine avatra Europa mein hamari janta to hamara bahin bhai aa gaya hai safe be leading se aur wo hai Chitra Avtar aapko hum swagat karte hai didi ji hamara program mein bhi aap bhag le liya hai jud gaye hai bas sunte raho और आगे के समाचार आप लोग को हम क्या क्या बताएंगे। सुरीनाम के बाद में सुरीनाम में यानी कि हुआ स्कूल के लड़कन भैया डिप्लोमा पावे वाला है जो सलाख भाई ले अब सितंबर मानदा आने वाला एग्जाम प्रयुद है और यहाँ बतावे है का वंग का बोले वंग भैया फिर यहाँ पे के को पार्लियामेंटारियर है उसका नाम बा शिवंग राय वंग बोले है अब देखो का भाई सुरीनाम में जितना लड़कन सलाख भैल मेदरबार स्कूल के बोले उस सब जे जाई अपन डिप्लोमा लेवे के सबन के चाहेगा 405 तक एसआरडे भरे के। हाँ moet er 450 SRD betalen om de diploma te ontvangen. Ik zit om pijla naar een zonnele bhaiya je je op een diploma ik toe mehnet kan lo hai op slag bhai lo hai en op een diploma lewe ke tab je je 450 SRD bhare tab je je op een schools diploma payo te ikar abare me fiha pe ke parlementarien ओ हैगा युवांग रोई वांग एक दौंदक के दे नाम एक बारे में बोली से कि मेदर बाल स्कूल वार खसला दर ले लेंगे मुझे सूफिल खेल बता लें और बोले हैगा डिप्लोमा आउटराइकिंग पे कुछ है 405 तक भर देवे के खवार मेरे तक कॉपियन कोम दान 165 एस आर डी बे बोले जो तुम मांगे कि उस सब तरह का कॉपी भी बनाई देवे तो कुछ है 165 एस आर डी भरे के तो
gauw haar merk te kopiëren en te bananen.

जैसे कार्ड को कॉपी भी तो बना दे ओकर खा भी पैसा भरिए तो बोले यौरन हेवन ही ले यार हर खबर में से हाँ लड़का स्कूल में काम करिस अपन और उसे मेहनत करके अपन डिप्लोमा निकाली से और बोले ऑफिशियल बवेस एंड वार देर फन प्रस्तासी सही दवांग एंड मुझे से नो खल्त एरफुर बतालें तो एक बारे में बसवार करी से भैया पार्लियामेंटारी दौलक हैत मांगी सेगा का बोले मिनिस्टर डेरक क्यूरी से जो अंदरवेस के यान के मिनिस्टर हैं और बोले हैगा बकेन खवर्दन के खसलाग दफा मेरे बारे स्कूलन अंतोन द कॉम यूनिवर्सिटेट के जोन बाहर जोन हुआ पे खसलाग भैले भैया 2026 तक 2027 में बोले उस सब के चाहे और भड़े के मेयर से लन नूतन बता लन ओकर इंस्क्राइब जे ये इंस्क्राइब करे तो अब तो के चाहे इंस्क्राइब खेल 5000 एसआरडी भरे के जे तू मंगे यूनिवर्सिटेट में जाए के और जेकर बाप माई गरीब है भैया वो कैसे भरी धिया बताई गई हैगा कि पहले रहा कॉलेज कॉलेज यार में उस सब के इंस्क्राइब के अल्ट्रा 4200 एसआरडी अब ये रखेरिंग जोन आए गए हैं सिमोंस के और रुसलान के अब वो 800 दिराक बढ़ाए रही से और हो गया 5000 और एक बारे में बताई से कि जो लड़कन डिप्लोमा जाए मेरे बार ओके चाहे 450 भरे के और कॉपी मंगे तो कॉपी भी तो के दी तो ओकर खा तो के उनको फिर होने 65 एसर दी कॉपी के भी पैसा भरे के परी तो ये बात है हमारे जनता सूरीनाम के बातचीत हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे जनता और तो लोन जानो भैया यूसीसीएन पॉलिसी के नाम बहुत बिगड़ल है भाई अब में बतावे अरे तो लोन जाने अब क्विकवा ना मिलल है भाई जो चोरी बैलास को तो पॉलिसी विरोध से तुम एक बारे में जानो है द्रक्ष लाश हुए है सोना लाश हुए है स्कोतु ले ले भग या भैया लेकिन अब तमाशा देख भाई बहुत बड़का चकल्लस वाला चीज है मुर्गी के बहुतु सबन जो खा है जनता ओके सबन बसला करेला उसको तो चरा ले भैया अब एक बारे में हम तुल को ऐठ खबर आई था बताब यहाँ पे जो ओकर बेड़तवा आई तो ओकर बारे में बतिया और हमारा मिनिस्टर जो है हनीस मनोरथ का बोले है वो खाली अपन यूसीसी के नाम फार्म बदले भैया चोर और ठीक से ना पकड़े मुर्गी बहुत तात देशों में से चोरी होए लगल है तो मिनिस्टर बोले बोले अब हमार मिनिस्टरी के नाम ना है ना मिनिस्टरी फॉर यूसीसी एंड पॉलिसी बोले हम लोग के मिनिस्टर के नाम हो ये है मिनिस्टरी मैंने यूसीसी एंड फेलखैत भैया के फेलखैत कहां से नाम में भाई अब हम बतावे कि डाम पे चलत आदमी लोग के बालकन में रूफ होवे चारों बगल रूफ होवे है और हमार हनीस मनोरथ नाम फॉर मिनिस्टरी यश बोल जो रहा ओकर नाम 7 तारीख अगस्त के ऑफिशियल बोले फरदर खान और नाम मिनिस्ट्री फॉर यूसीसी के धरती से मिनिस्टर फॉर यूसीसी एंड फेलखैत हेड हीफ मिनिस्टर हनीस मनोदर मुर्जा वकेन कमाक द नाम बदले से जो फेलखैत हो जाएगा ना भैया तो ओमा बहुत बड़का काम है नाम थोड़ो काम चाहे बदले तो हमार भैया कुमार शामी भी आएगा राकेश समुझ भी आकर हमार प्रोग्राम में जुट गए हैं तो रुके जो नाम बदल लेगा यूसीसी एंड पॉलिसी के कि यूसीसी एंड फेलखैत अगर मतलब ना तो देशों में फेलखैत कर दिए वी मार्क दे समान फॉर द हैक मींस नाम सेखनीक सी मुझे वर्क gaan doen om de veiligheid van het land namelijk te waarborgen, om de veiligheid te garanderen voor onze mensen in Suriname. En dat hebben we niet. Volgens de bewindsman is de naamswijziging 10 tarieken ook formeel. Ze hebben doorvoerkerd eraan. Op bolle hega minister T 75 jaar bestaan het ministerie. Manoran gaf aan dat de wens om de naam van het ministerie te wijzigen al reeds 20 jaar bestaat. Maar de keuze voor de term veiligheid wil de regering benadrukken dat alle veiligheidskorpsen onder één noemer worden gebracht. Dus ze hebben daar hebben jij die hebben namen veiligheid je derde wet kan hamloen. Janta ke utra veilig bieden karpabe, kina bieden karpabe. Ab bolle utra dinsje ze hebben mangat raakere. Bolle na kapje abde ko bij jij ego nikeri ke baad de. Inspecteur otom jatra bij jij jure oto ulit ge nikeri me. Ha. Ab pata na hebben daar. U dhakolera ki kauchi dhakolera bij jij hoe dhakolera
मेरा राज बड़ा ढेर चले है। तो 12 दिन पे भैया बुद्धू आएंगे है, कहाँ रह ले दिलप बुद्धू, स्वागत है यारो आपके, देख के दिल खुश हो गया। तो बुद्धू बात ऐसे भैले, बोले निकेरिम सिपाही जा ऊपर से इंस्पेक्टर भैया झूरे ओ तो गोत्रों में उलट गए है। तो बोले रस्तुआ में होल्ला, बोले हम अंतवाई कल्ली बाटी, तो जितना ओ तो होलवा में से अंतवाई करे तब तो सबके चाहतरा उलट जाए के। दिस दैट क्लोप तो नीट मेन से दैट क्लोप नीट कि एगो होल का अंतवाई कर ले तो ओ तो उलट गए, ओमा और कुछ हुई जरूर एवंत हुआ से एक के ओ तो थोड़ो पास हुए हैं। बुद्धू दिन भर वो तो पास हुए है और इसको उतू के ओतो

हाँ दोस्तों, तो निकेरी के मानचित्र हुए के इंस्पेक्टर है, बोलो बैठल रहा एक मेला तो हुआ चलावत रहा और जाए के वो तो गोत्रों में गिर गए है, उलट गए दो तीन कलैया मारी से। निकेरी के मानचित हो बोलो अटवेक कर ले रहा होल के, तो होलवा सबको जो अटवेक करे तो हुआ दिन भर चाहे वो तो उल्टे के उमा जरूर कुछ भेद हो, लेकिन ओकर बारे में सब ना बतावे हो सके। वो तो हुआ चलावे और ढकोले लाल हो सके है, सब टेलीफोन में बेसक हो सके है कि सब ख्याल ना करे होलवा नाम ना ताके हो सके बड़का सनल है पे हुई वन तो वकई कलैया काट से दस से खसे से से बोले अंतवे कैसे को होल के तो हुआ उलट गए भाई। सो मकलक इस इंसुरी नाम दस मकलक zijn fouten kunnen gaan bedekken, mensen. Zand eroverheen gooien. Kijk, kooi naar jij onderzoek keren. Maar dat zijn we hier in Nederland niet. Ik bedoel, hebben een ego baan, je betiaila. Dan hebben een, oké, in een jersey leken, poneetak, oké, takila. Kietje joa, kaise hei, kaise na hei. Aur, jhoot je bolio, bhaiya. Dan ohi admi lege paas hoi, je jhootua na pakar paai. Maar, हम लोग यहाँ नीदरलैंड में वह कई फेरदर ना बोले हुआ के आदमी ना देखेगा मर मिंदर सबन आंदाख देवे है। हिया बोले हैगा इंस्पेक्टर सिकन हविश में गई है, बोले दे तू द्राख फान है उनको फॉलो और फेरदर ऑन द सुक नतील आई है नार में भाई ले है द साक ओवर खदराकन फरकेस ऑन द सुक रिहू वेस्ट में। तो यहाँ पर हम बोली तुल के बताए दे एगो वे तियोता अक्षियो रहा डोंडडाग के रात के खराक बे एन एनसाइडिग फरकेस ऑनगेलुक in de omgeving van Middenstandpolder in Suriname. Te betekenen dat ze willen ontwijken van een kuil, mensen. Dat lijkt me heel erg sterk of dat wel waar is. Tulunjano, Bosjebrug, Suriname, Sapko, ja, hier is een naam. Hamar Tony, Jab, ja, Tapper, Motor, Fiswa, Rawe, Budubi, Rawe, Sapko, ja, Bosjebrug, we hebben een keer twee prokia, John, hey, Oker onder, hoe, hoe, hoe, Jab, Sunio, to Admi, Kude, Chalang, Marije, Swam, Batke, Kabul, Spring, Plank, Possess, Kude, we say, Huma, Kut, Kut, Admi, Jan, de Webaya, Haliego, Lerki, Kut, Margera. तो एक बारे में एगो मलैनी है शादी है भैया एनडीपी के, और इस शादी बोले बोले कि अन वैद बॉस के बड़ो की चाहे अंदाख देवे के ना कि कुदियो पर ना अंदाख देवे के बोले हैगा आन शादी बोले पार्लियामेंटारियर है बोले कम तेकनिक बनाए है बोले द ब्रुक इस बार क्लास 60 द पार्लियामेंटारियर फ्रा की बोले हैगा चाहे इंस्पेक्शन करे कि बड़ो की गिर ना जाए सब कुछ बेतन तन मोई है कि ना फॉर हर इंफॉर्मेशन de brug maar klasse 60. Echter daarin daartegenover is het een feit dat de brug sinds haar oplevering in het jaar 2000 inmiddels maar 26 jaar hoor je zwaar overbelast barka teruggrind leek ja hij santi leek ja hij olie tankers houtblokken moet dragen. Door de volksvertegenwoordiger werd er vooral opgewezen dat de dynamische belasting heel funest is door het trillingen waaraan de brug op een dagbasis wordt blootgesteld. To iemand ze sadis to hem eens bati ki jab ego cheez hai to oke chahi onderhoud bhi ikhre ki ha to ta hum bhin jaye na hanis manorat lage bhaiya minister manorat bole hai ga bole for common the Suriname and policy start word. Ik weet niet wat deze meneer Manoret allemaal wil, namelijk justitie en politieke naam, dat is justitie en veiligheid. Of willen voor zelfstandigen van afdeling, instituten, willen ook een mange keren. Of willen preventie van de criminaliteitbestrijding in de enige benaderingen. Als Satarike willen 75 jaar bijleggen, minister van justitie en politieke, Barilamba Chora Likale, mag ik hem te zeggen, Brakari Dosto, Karen. की और जरा अच्छा अच्छा और न्यूज बा हमारे पास जो आप लोग को हम नतीजे सुनावे मांगेला। अब देखो भैया लोग बोलिए जोनी कुछ इन बराक के राख के बारे में, इन बराक के बारे में खोजे कहिए ना है बुद्धू जा खोलिए भड़बड़ भड़बड़ आवे इन बराक सुरीनाम में फन हीर तो दार है। और हम लोग के मिनिस्ट्री बोले है बोले हम लोग फैल हाइट हो गई बाटी माहिया बतावे हैगा पॉलिसी फरे बकी तुई होंदे देर तक आदमी के पकड़ी से रजिस्ट्रेर करी होंदे सेशन सेफ तक घर तुरान भैया होंदे सेशन सेफ तक इन बराक एक महीना में होंडा सेशन सेफ तक घर तुरान है हमारा सुरीनाम देश में। हाँ तो एक बरिश में कितना होएगा भैया कुमार, एक बरिश में कई गो होएगा
एक बरिस में तो कई गो जब 12 दाई होंदे से इफने से अस्तक जब जोल ले तो 10 दाई तो 1700 1800 कानी कह रहा हो जाए भैया हजार हमारा हो ये जोन खाली हम लोग के घर में हम लोग के देश में घर तुरान है और ओकर बारे में होंदे सेशन से इफ तक इन बराके में तुए होंदे देर तक आदमी के पकड़ी से मना सोचे हर एक घरों में एक आदमी जा है उस सब जा है चुरवंत अपन खुरू बन के जा भैया जैसे पिंगो पकीरा जा है आंख बन कर ले करिया मस्कर पहन ले पिस्तौल कटलीस चांपू हथौरी फतौरी ले के जा जैसे टेमड़े मान भैया तो यहाँ बतावे हैगा Tussen 27 juni en 2 augustus landelijk zijn 230 animiek pakkerissen. En bolle hega oma zijn 144 verdachte he. Abena boys kohi he. En bolle hega John banduk se khawel se. Bolle hega animiek lokke me sandal kerke leise. Ema se 13 go khawapen overval me hega 35 go zijn beroofin karise pistool se. रूफ करी से 35 को ओही बदरखवा में से जो हम बता रहे ली 35 को खवापंद ओवरफॉल भेले साथ साथ अबे बता रही हूँ तो सस सेफ तक इन बरा के घर तुरान है और रेवाइस इन डर तक गोक सबन ले ले सेगा बोले जेमा दुई को बंदूक भी मिलल है पिस्तौल भी मिलल है और बताए गए हैगा डर तीन को खफाल रख स्त्रेर भाईल है और बोले है यहाँ पे दोस्तों कोरस पुलिसी से नाम ब्लाइफ पुलिस पर्सनल से ऑन द स्कार्स मिडलन एंड अंदर बपेर के इनसेट ऑन द फेलाखाई इन इट लैंड वारबोर्गन तो आप लोग को हम यहां से बधाई देते हैं किसको तू और जोर से काम करो सही फरवा हमें बड़ी कमती लगे है बहुत कमती लगे है और बोले तो हमारा काम है भैया हम लोग मीडिया के जबले हम लोग के असली असली यानी कि रिजल्ट ना मिली हम लोग कभी पूछती बोले वाला ना है वैसे स्क्रिप्टी de regering, we zijn scherp tegen de overheid, we zijn scherp tegen de politieapparaten, we zijn scherp tegen onze mensen. Iedereen moet veilig voelen in Suriname en ook hier in Nederland. Totdat ze niet meer veilig voelen, zal ik door blijven hameren mensen. Dat is mijn werk en niet anders. तो हमारी जनता हम चलते हैं आगे को अपना समाचार को लेकर हाँ तो हम भी आप लोग को कुछ बैतलान के बीच समाचार को सुनाएंगे अब देखो भैया तुम जानो है हम फिन जाएला का बोले हॉर्मोस की ओर स्त्रात हॉर्मोस तुम सबको जानो है हर हफ्ता हम ओकर बारे में बताएला और वो हैगा ईरान के यहाँ से सब बुटिया नावे तेल के प्राइस चढ़ जा है तेल के प्राइस चढ़ल जा अमेरिका बम्बा देर करे ईरान के किस तरह हॉर्मोस कोल बुटियन फील हबड़ा हुए हम लोग के तेल आ चुके तुए यूरो फिर तक फाइवन देर तक आएगा यहाँ पे भैया और तेल चढ़ जा है एक बारेल रिव तो रिव ओली हो ये मेयर दन होंद डॉलर हैगा इन फैक्ट साथ साथ अब अमेरिका ना ले से हॉर्मोस के बारे में तो अभी क्या करे है ईरान जो नहींगा सऊदी अरबिया भी दागे लगल भैया यॉर्डानिया के दागे लगल जहां जहां हम लोग के यानी कि जहां जहां त्रिम के अमेरिकन से बासे से उद्देश्यों भी बसकाद करे लगल है तो अब इस सब एक में तो उदक हो जिसेगा कि तीन देश एक हो गए भैया मेरे औस्त के तीन देश और एक हो गए वो हैगा सऊदी अरबिया पाकिस्तान और तुर्कू तुर्कैया भैया तुर्कैया सऊदी अरबिया पाकिस्तान और तुर्कैया उस सब एक डिफेंसी अकॉर्ड करी से जैसे हम लोग के यहाँ पे यूरोपा में हम लोग कहेगा एयू हैगा स्टेन दैट के कितना लैंड है फ्राक में इवन इज प्रसीज मा वी वेट वी सेन इन द एयू वी सेन इन द नाटो लम दस शख द तो नाटो में जो तू कुछ कल्ले बाटे द खाद हेल नाटो टेक ऑन ऐसे सबन मेरे ओस में तीन देसेगा जो अपने में को अकॉर्ड डिफेंसी अकॉर्ड टेकन करिसेगा कि हम में कोई दागी तो एक वो हम हेल्प करी दो तीनों देश के तू अनफाल कर ले बाटे तो लंगा डाम से हमारा हमारा लीफ टाइट खनोत हमारा स्कूल के दोस्त जहां हम लोग संगे स्कूल जात रही एट के लंगा डाम पे वो है रॉय काली भी आ गया है तो हमारे प्यारे दोस्त आपको हम बहुत प्यार से अपना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं तो हम चलते हैं स्वागतम तो हम चलते हैं सऊदी अरबिया और पाकिस्तान
के बारे में अतर्कए के बारे में इन तीन देश एगो डिफेंसी अकॉर्ड करिसना सामो में डिफेंसी मतलब कि मिलिटेयर के समय जितना है तो एकर बारे में टोनी भैया सुन जाती है राहुल तो डिफेंसी के चीज ढेर जाने नतियु लग जितना आदमी ऐसा सुनेगा हिल्फ में से वेट व्हाट डिफेंसी डिफेंसी अकॉर्ड इज. Maar ik zal het toch even beter nog proberen uit te leggen dat het nog goed overkomt. Defensie zijn de militaire akkoorden. De militaire akkoorden is op 10 des teken. Kariski, heb je iets in de zwak je kooi dagi ga? Heb je kooi twee ter kijk? Dat je ik woon des woon kan helle toe bij mij te gelen. Maar je zei hem ook een NATO-landen. Hij ga. Toen ik een president John Hega Erdogan he. Saudi-Arabië ke kroonprins Mohammed bin Salam he. Aur पाकिस्तान के जो प्रीमियर हैगा शहबाज शरीफ है और इस मक्का में गईल है सऊदी अरबिया में और वहाँ पे तीकन करी से कि तीन देश के ये छुईगा दागेगा बोले तो हम लोग के दागे से ईरान इस सब के दागे से यानी कि सऊदी अरबिया के दागे से यॉर्डानिया के दागे से मिडल ओस्ट के बारे में है हमारी जनता तो यहाँ बतावे तो ओवर इन कौन सिम्बुलेर दाम के इन सेट फन ध्री स्टाटन ओम हिट कॉलेक्ट actieve veiligheid te versterken en vrede, stabiliteit en welvaart in de regio en daarbuiten bevorderen. Het komt naar de Pakistanse premier Saheb Sharif, Turkije Wala Erdogan en Mohammed bin Salam. 28 februari ke ik er bare mee aur kaam kari se teken hui gaye hain aur cheez likhal hai dosto lekin yahan bataye gaye hain that Pakistan's carrying weapons and ervaren legers Turkije geëvanceerde wapensystemen in de lidmaatschap van de NAVO en Saudi-Arabische economische macht ontstaat een krachtige alliantie die gericht is op de collectieve veiligheid en stabiliteit. Mensen, laten we even hopen dat de oorlog tussen Amerika en Iran stopt, mensen. Dat wij allemaal op dit moment zo duur betalen voor onze benzine. Hamloke telke, hamlo etra barela. Aur isab chit jahe wel verbeter hoe ke. Maar jab dekho to stop hoe, okar baad me wapen invoer kar lewe hai, ta fin shuru ho jahe, oorlog hoe ke. Hai nai chi jua hamare nani. तो हमारे प्यारे प्यारे जनता आप लोग सुने हुए हुतुस के बारे में रोई हुतुस के तुलन जने हुए येमन में है भाई येमन जो समय पे अमेरिका और काबुल है इसी ईरान लड़त रहा तो हुतुस येमन में को ग्रुप बनाई से तो इसब दागत रहा योर्दानिया के तेल के बोट डागेरा भैया इसब अनफाल कले रहा योर्दानिया के तो योर्दानिया की सब दागे रहा येमन में इस सब एगो ग्रुप हैगा कहां बोले हैगा येमन में वारफान येमन हैव सन एक रेगिंग एंड एक लेखर है जैसे हिजबुल्ला हैगा उ ऐसे एहू सब हैगा हुतीस तो इस सब काम करी से अपने ही देश में अब दागे के शुरू कई से येमन में एकर बाल में हुतु एगो रिबेल ग्रुप है यार रिबेल है भैया जैसे अब हम बताएला कि अन रिबेल इस टेररिस्ट सेख मार तो इस सब येमन में बा अब येमन में शुरू कई से का बड़का बड़का वापन से दागे के और इस सब के स्टेन के करे ईरान करे भैया ईरान करे है हुतु रिबेलन ड्रोन अनफाल करेगो प्रोफेसी के नाम मारे येमन में और वहां पे बहुत आदमी के दाग के माढ़ल ने है और यही में से मिलिटेयर ब्रोन जोन बतावे हैगा बोले 58 को मिलिटेयर बोले ख्रोता अनफाल हुतीस करी से जो उस सब के सुर जाती उतरा ढेर मर गए ओही देशवा में और बताए गए है कॉन्फ्लिक्ट इन द दौर ईरान खस्ती द हुतुस ए इंटरनेशनल एरकेंद्र रेगिंग फन येमन और का बोले जोन येमन के रखेरिंग ओके इंटरनेशनल ओके एरकेन करी से हुआ कर रखेरिंग कि ताई हुतुस ना मांगे हुतुस मांगे देशवा लेवे वार ऑन द होस्ट सा साना का नाम भाई येमन में बीते हुए महीना में लुक अनफाल भैया साना में भैया हुआ सब बमदेर कर ले रहा एगो ईरान से तुस्तेल सो क्यों लंदन बड़े लुक द रीस फॉर हेल्स एक्सी आई सऊदी अरबिया के दर फरांतुर लक वर्क होल्डर फॉर द अनफाल तो जनता आप लोग को हम
बीच बीच में मेरे उत्सव के भी कुछ बातचीत आप लोग को हम बता देते हैं कि मेरे उत्सव का हुए कारण कि लोग सूरीनाम के न्यूज सुनते हैं, लेकिन हमारा कहना कि बैतलान की न्यूज भी आप लोग को जानना चाहिए कि हमारे देश में होता है क्या, वो तो हमको मालूम होना चाहिए, लेकिन और देश में क्या। आप देखो भाई, अबे आप बता रहे ली बता रही रॉय सुनिए स्पांग सूरीनाम देश में भैया कुवेक चोरी हो गया, आज तक पता ना मिलल है। सोना चोरी हो गया आज तक पता ना मिलल है। कुवेक कोई डाल दी से सर मक्का में कहां बेना लाद में सब मछली मर के उतराएगा बे पता ना मिलल है। और कितना कितना इसको तू एगो बड़का दृश्य गिल से कई रिश्तेदार के पुलिस ब्यूरो में से निकाल दे से बे पता ना मिलल रमिया कहां सबन खोजे है इसको तू पकड़ाई के बन भइल है। तो स्कूटू लोन सूरीनाम में भैया चुकू लेवे है 2000 डाला भर दिए तो कफर ब्लाई फर क्रेडिट मिल जाए निकल ला भैया। बीते हुए दिनों में हम बता रही लेकिन यहाँ बातचीत हुए अब सरनाम के सिपाही बस लाख करी से मुर्गी के बहुतू मुर्गी के बहुतू बाकी अब मुर्गी के बहुतू पते ना मिले कहाँ है बुद्धू। अब देखो चकल्लस भैया मुर्गी के बहुतू अब पते ना मिले अब सब हम देना में खोजे है को लंपू बार बार खोजे देना के कुर्सी के नीचे बार बार खोज एक ओवर ड्राइव में बीच में से मार द बदुलिंग इस नाम ले ओवर वार ओवर ऑल वर्ड द अंडर ना ना द किप बाउट के सो हम लोग यहां बोले ला किप पाउचेस सिरी नाम में से बोले किप बहुतू मुर्गी के बहुतू बस लाख करी से चिरवा के दुकान में कानी कहां बसला में मुर्गी के पता ना है मुर्गी के बहुतू के कि कहां भैया। और इसे स्टॉकर एफर्ट के पॉलिसी ब्यूरो में तू जाने से बन ले ली पास करे है जे तू जइयो अल्बिना तो हुआ स्टॉकर एफर लगे हुआ रुकियो तो हुआ पे आदमी लोग बड़का बड़का पाकी मुर्गी किन किन ले जाल बिना तो सबन ओके बस लाख कर ले रहा मऊ मुर्गी का पता ना है। अब का बोले है असेंबली में एकर बार में मुर्गी के बहुतू खो जा है भैया। अब बोले हैगा बस लाख नाम ले इफस में ले मेरे पॉलिसी कंट्रोल पोस्ट होकर एफर में मंगर के असेंबली में बहुत बड़का कृतिक भइल है। और बताए गए हैगा जितना चीज सबन बस लाख करी से कौतून स्टॉकर एफर्स के कंट्रोल पोस्ट में कुछ ना मिलल है सौदा पानी भी ना मिलल है। अब का बोले बोले मुर्गियन कहां है तो शिशाल शिशाल मीडिया बोले बोले मुर्गियन कोई के पेट में होई तो बोले कोनो मसाला बनाई सोई तो बोले कोनो आलू में बनाई सोई कवाई गए ओके बोले इसको उतन खा खा बोले पेट बड़का बड़का करके जबर जबर सब होई गए दौड़ ना पावे इसको उतू के पीछे चोरन के पीछे बोले यही सब बहुतन शिशाल मीडिया है जो फिल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। और हम भी तो लीवर करे खिलवाड़ तो ला करेला यार दैट इज कौन जो मींस व्हाट वार है दिस मुच वेल ना फॉर बरेंगे तो भाई तो मुर्गी के बहुतू ना मिलल है तभीया बताए गए हैं बोले ट्रांसपेरेंसी से मांगे दे ना में बोले के पो बाउच से अंदर बदरफन द प्रोजेक्ट तो आई थिंक सेन गब्लेवन वार सेन से गब्लेवन और यहां बतावे कंट्रोल पोस्ट फ्रांस गुयाना के आप लोग जानो है बोले हुआ के फ्रांस गुयाना के देश के सी भले क्लाख तक करी बर्खस बोले मेर के पबाउचेस ले इफस में दिल अंदर बोस का अपन क्वेट राखते मेरे कंट्रोल पोस एनडीपी के पार्लियामेंटल सेल्फाना अफोंसुआ जोन हरदम चिल्लाई चिल्लाई बोले ओई कल्ले राखी बोले बोले जमजोन बोले रहा कि औरत के नाम आके भले के प्रेसिडेंट बोले सब औरत हम लोग चली जा बहरे बोले हम लोग सब कोई चली जाएं बहरे। तो जितने लोग ट्रेन चलाते बस चलाते आपको वर्क सेवन से तो यहाँ बताते हैं लोग कि अब काम पे न्यूज सुने से थैंक यू। तो बात चीजिए रहा है कि अब कंट्रोल जो फ्रांस से ही आदमी यात्रा पर मुर्गी बहुतुल ओहू बोले हम लोग के कुछ ना मिलल है। अब सेल्फानो आसनसुआ का बोले है बोले चीजों कहाँ है बोले हैगा खोन बिरखस फलाइट बिरन बिरलान मोगन मिनिमन इन वेलकू फिल हिडन से स्टेल द सूरीनाम इज इन अदर फॉर बी नीदरलैंड रेसन फॉर ऑफ प्रेसिस वेटन वेलकू प्रोडक्शन से वेल एंड नीड मोगन इन terwijl vergelijkbare richtlijnen voor reizigers vanuit Frans-Guyana ontbreken. Daardoor lopen burgers volgens hem de risico onbewust regels te overtreden.
तो बोले ओहिक मारे चियो अरे भैया जब असलाख कर ले बाटे दम उते तो फर्नीचर फोड़ दे वाट से ने केपो बाउचर फर्नीचर विल दे है वेटन आसाम बिना बना दुर्क दा दे सामलीवर रेक्ट हीप ऑफ दुइलकहेड एन वार्स्क्यू दे दा दे इंद्रुक मुट वोर्डन फोरकोमन दा दे इन बसलाख नोमर कुदरे इन प्रिवे केकंस प्रिवे केकंस बामीना सिपे बना ले भैया दे प्लेट दे टेवर फॉर अनफंक स्प्रिकपिन बोले बामीना सिपे बनल भैया एकर बारे में अब जा महेंद्र जोगी का बोले जोगी महेंद्र जोगी भैया दिस किसी ओवर द रिडिस स्टेटस फ्रॉम द कंट्रोल पोस्टन जनरल पावी रेजो एनपीएस के फ्रूक द मिनिस्टर वेलके वेटके ग्रंडस्ला ब्रनसाइड एन स्टोलकर एवं अल्स ग्रैंडपोस्टन वर्डन आंगमेरक वोल्गेंस हिम ब्रिंग द क्वालिफिकेशन इमर्स बेवोगदेहेन मेट सिख मी तो मिला अवत हीरा भी आ गया है और आप भी बड़ा दिन पे आए लो बाटो मिला जी नमस्कार हो वेलकम सुनील दत्त गजरी आपको भी प्यार से स्वागत करते हैं साथ ही साथ मिला को भी तो हम चलते हैं और आगे को अपना गर्मा गर्म जमजान

आप लोग को हम एक गीत सुना दे। अबे बता भैया, एगो वोनी में कौन तमाशा भइल सरना में भाय। हाँ, और ब्राजील में का भइल है, हम सोचित लोग के गो हॉट वन तरी नाचे नाचे वाला गाना तो हम तरी सुनाई दी, और वो कहाँ हम रखे हैं, वही तो ओ यहाँ रेगी, एगो रेगी है फोन फन हिंदुस्तान है।

एक हिंदुस्तानी रेगे सॉन्ग आपको हमने सुनाई ही दिया है हमारे मीठा मीठा जनता। तो प्रोग्राम में जुट गया है वो है गीता शिगुलाम, आपको हम हृदय से दिल से बहुत प्यार देते हैं। गीता जी आपको स्वागत भी हम करते हैं यहाँ दरहा शहर से, जो श्री नाम जिससे हमारा प्रोग्राम को फॉलो करते हैं हर हफ्ते की तरह। साथे साथ आ गया है फिर से एक बार वो है अर्चना जी, अर्चना देवी का हरदाम, आपको भी हम बहुत प्यार देते हैं, स्वागत करती है प्रोग्राम में अर्चना। तो अर्चना और गीता साथ साथ मिला अवध हीरा भी है, तो हम चलते हैं तुरंत तुरंत तुरंत चलते हैं। भैया आप भी बोले रही सुरीनाम देश में क्विबाने बड़ा ढेर आएंगे भाई, आप लोगों को जितने लोग सुरीनाम में हैं जैसे गीता जी है और वो लोग जो सुना वहां पर सुन रहे हैं, तो बोले परी क्विबान आएंगे लेकिन औरत भी आएंगे बड़ा ढेर भाई वहां पर। आदमी लोन हुआ पर ये मर्दाना है बाकी औरत भी आएंगे हुआ, तब बोले हैं औरत लोन हिया आए सब काम करे भैया, बाकी एक क्यूबान की औरत है। हाँ क्यूबान की औरत का करत रहा उजातरा क्यूबा से मोई मोई लड़की हुआ से लावत रहा, बोले चल चल हम तो लोग के हुआ कांतोरों में काम देवे मोई मोई नकुल फिर भी कर करे पूरी लगाई के लिपस्टिक लगाई के चल तो लोग के हम बहुत मीठा मीठा काम कर मजा लड़कियन के औरतिया लेके आवे नारे मौसी, बस लड़कियन के ई पासपोर्ट वाले लेवे और ले जाए के बैठा देवे भैया होटल में, ना जा हम लोग जाले फकान से सूते क्लब में भैया नाइट क्लब में हॉसल करवाए भैया सेक्सुअल का अन काम करवावे है और पैसों ना देवे है, बोले जोन पैसा तो के भर के मंगेली पहले वो सब चीजों भर में और वो का बोले पासपोर्ट तो ले ले कि कहीं तू जाए ना पाइए इंतमीदेर करे भैया और ना खाली परमारी बहू में छौड़ियन के ले जाए के नाइट के लिए पुआ में धल्ले रहा अर्चना बेना लंत में जहाँ सोना खोदा है भैया सुन ली बाटी हम तो ना गई ली है, बोले हुआ पे भी सबन के नाइट क्लब भय छौड़ियन के ले जाए भैया हुआ पे बैठावे है वन कौन ची आदमी लोन अपन घरे औरत छोड़ थोड़ जा बेना लंत में काम करे औरत ना है भैया तो वही सबके संग है अपन मनोरंजन करे है। और बोले उस सबके भरियो तो सोना से भरियो जो सोनवा खोजियो ना एक टुक्का की कितना पता ना तो के छाई छौड़ियन के भरे के तब तू ओकर संगे जइयो मार। अब बतिया ई है ओमा से कारगो लड़कियन फरार हो गया हो जाए के अनखिफ्त करी से तो सिपाही जाए के अब ऑन द शुक्रे बोले मेंशन सोमा कल ना खाली को कहीं न स्मा कल हो भैया हम बोले ला छौड़ी के स्मा कल हो क्यूबा से लेकर सुरीनाम तक अभी फिनिश वेला के बांध कर रही फिनिश वेला अपन को कहीं न कि पठावे है खियाना खियाना से सुरीनाम एम फिर सुरीनाम कोम द कोक इन नार यूरोपा दिस इज द रूट नाम लग फन कोकीन दैट हैव द ओवरहेड फन वेनेजुएला बकेन कमा, लेकिन जो छौड़िया मंगावत रहा सबके उ फरार रहा भैया ओकर नाम रोसाना भैया रोसाना रोसाना गुरा पेरेस अलियास दियाना पेल भागला पेल भागला फॉर फ्लुक्ट तक रहा तो रोसाना के भैया गायाना में जाए के पकड़ान है। अब देखो चकल छौड़िया के जाए के सबन पकड़ी से गायाना में तो गायाना में जब पकड़ी से रोसाना के तो रोसाना के लीफर कनी से हनीस मनोरत लगे सुरीनाम में भैया ओके पठाई से सुरीनाम के सिपाही के सबन ऊपर हंदक करी से गायाना के ऑथोरिटी तब यहाँ के पीछे ओके काबल ऑफस्पोरिंग पे कर ले रहा अभी पकड़ाई गए है हमारा रोसाना तो अब रो

और का बोले है हिया श्री नाम देश में चकलस करवावत रहा। तो ये बात है हमारी जनता। तो शांता अवतार भी आ गया है। तो शांता जी आपको स्वागत करते इस ओपन क्लास कनूर फ्रॉम मई मेन सिंह श्री नाम। एंड हेल लाइक दैट यू फंदाग op mijn Facebook en online ben. Santa ji, aapko hum bhi swagat karte hain Santa Avatar. तो जनता हम चलते हैं और आगे के बारे में। सूरीनाम ही देश में हम सोचिल हम है, लेकिन हम बोली तरी बैतलान के बतिया भी तो लोग के हम बता दे भैया हम जाएला तरी इंग्लैंड की ओर। एक आदमी चनर इंग्लैंड ब्रिट्स ब्रिट्स तू जाने भैया जो आदमी गुजर जा परिवार में तो ओकर राखी मिले हैं और ओकर राखी कुछ दिन अगोरे के परे है। राखी कुरुच अगोरे के परे सूरीनाम देश में जे जइयो के मनासी और पे तो हुआ पे तो बिहान भर जइयो पर राखी बिटोड़ के जइए सरवाई सके है या वैखनासी में। लेकिन यहाँ नीदरलैंड में या यूरोपा में राखी दिरेक्ट ना पइयो ये मुतफ वक्त एन दाम पास करेक। मैं बातचीत ये चीज हो रहा है, ये बात हो रहा है क्या इंग्लैंड के बारे में। तो एगो ऑंडर नेमर रहा एट फर्स्ट ऑंडर नेमर के बातचीत हो भैया ई का कर ले रहा इधर के माल उधर करत रहा और उधर के माल इधर करत रहा। हाँ ई दूसर के राखी दूसर के मैया के राखी दे दे इस दूसर जात के और बप्पा के राखी दे दे इस दूसर जात के और सब कोई राखी ले ली अपन घर में राखी तुरो जान पइयो कि हमार भाई के राखी के हमार माई के राखी केकर राखी है। राखी ले ले आदमी अपन घर में सब धरे रहा स्वागत करत रहा राखी के। लेकिन वो मौत यानी कि ओकर ओकर लाइक के राखी बोले ला दी एच फार्स के और वो आस जोन रहा मीन से और ओवरलीडन के आदमी लोग के फैमिली है वो आस इतना मोई धरत रहा। लेकिन जो अंदर नेमर रहा ब्रिट्स एच फार्स अंदर नेमर रहा वो जितना राखी रहा सब उल्टा पुल्टा कर दे रहा भैया है विसल द आस फॉर ओवरलीडन द बखरूफ सब लेखाम नीत एंस्टाल दो नाची फना बस्तंदन भैया चोरी का जो नदमी दोनेर करत रहा ओहू चोरा लेवत रहा भैया। एगो अपन फेर फेर तक यारक ओकर नंबर रॉबर्ट बुश वास एक ना रहेगा गो एट फर्स्ट ऑन द नेमिंग इंग्लैंड में है ब्रिस किंगस्टोन में है और वहीगा नॉर्दर्न फन इंग्लैंड और ओके समन पकड़ी से भैया और बोले इन टोटल सीफन सेस्तक राखी उल्टा सीधा कर ले रहा। तो गीता बिहारी आपको भी हम स्वागत करते हैं, आ गया हमारे प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। तो गीता जी आपको भी हम बहुत प्यार देते हैं। तो बताए गए है कि उस सीफन सेस्तक आदमी के राखी उल्टा सीधा कर ले रहा भैया। तो ई आदमिया भूस के सिपाही पकड़ के ले गए तो अब ई फोर द रेखतर गए ले यहाँ बताए गए हैं 3000 बवेस तेखन बसलाख सबन करी से 12000 दो की मेंशन फर सामल करी से 800 खतई को फरकलार करी सेगा होफ एक्सपेक्टर जो रहा और बोलेगा 300 आदमी के ई स्लाख ऑफर करी सेगा मार इन वेरकलक है बोले और ढेर आदमी की स्लाख ऑफर करी सेगा। एगो कंप्लीट खाओस इंग्लैंड में भइल है भैया। मद कने में फोर्स तेल जिकर जिकर धीर बार मरल है एंड एंड खाय शुमले में द आस फन यो धीर बार जब तू तोर पलवार के आस से द बीच की ई हमार पलवार के आस है ओके तू जइयो ना ओके तू जइए सिरवावे पानी में जइयो ओके तू विनती भाव करियो पूजा करियो अपस्केट लियो एंड ब्लैक की कोनो घोड़ा बिलार कुत्ता के भैया दिस इज दिस कान टॉक नी द स्पीड ये तो मेट मेंसेस गफूल त ई भैया के जहल मिलल है और जहल कितना मिलल है मिला 20 बरिस के 20 jaar zelfstraf op IJs in Engeland mee. En die man is zelf namelijk 48 jaar. Dus als ik 48 en 20 doet, bij elkaar doet, dan is het behoorlijk hoog, mensen. Dat bechara kan ik niet erbij. Je helse kina, maar toen jij goed gedraagt met mijn 10 kwart. En ik erke bhag, ja, wie weet dat. Maar haar kaam is betaan ik ook. Die aas ketra schumel bhail hai. Ik had dit ook een keertje gelezen. Maar dat was ook in een ander land, mensen. Dat was in een ander land. Ha. To hamare janta ye sab baat hai. Want mai overmacht tu na jaan sake. का हुए और का ना हुए है।
पुलिसी खाओस पुलिसी ग्रेप इन जानो दोमनी स्ट्रांस सुरिनाम में जे जे है दोमनी स्ट्रांस सबन रस्तुआ बनावे भैया हाँ दोमनी स्ट्रांस सबन बनावे है खोद खाद के से बनावे है सिपाही हुआ फरकेस रही खस करे लेकिन आदमी लोन तू जाने हुआ बात ना सुने है ते कर बारे में सिपाही लोन बोले फरकेस ऑफ स्टॉपिंग द सेंस ऑफ फ्लोइटिंग फॉर दोमनी स्ट्रांस इन ऑस्टान स्कोटलोन हुआ भैया एक्स्ट्रा मात्र ही हल करी से तो जब तुलो सुरिनाम देश में बाटो चलियो भैया अल्फास ना चलियो स्कोटु का आनवेशिक में करियो नहीं हुआ बूटू पावे में खेलवार ना करियो और जब पैसा है भैया बूटू भर के तो खेलवार करो मन खाती वेल मैं अंदर मस लीफ स्पेल मन ती अंदर प्रोबेर खुद रही द मर यही आज यही फरकेस रही दन है पे दी प्रॉब्लम तो चंता ये सब बात आप लोग के आगे हम रख दिया है सोरा बरिस के तू कितने बरिस के हम 16 बरिस के जब तू 16 तम गनवा तुलों जानो ना है बाकी हिया बातचीत कुछ और है मिला सस्ती निया रख भैया फेव ताल ब्रूफिंग फन ब्रोमफीस 16 बरिस के लड़कन जे अबे जाए स्कूल बाप रे बाप देखो खाली ब्रोमफीस स्कूटर चोरी कैसे सरनाम में 16 बरिस के लुंडन भैया नाम है सबके छोटी छोटी लिखल कहां कहां पढ़ी और इस सब केस को तू पकड़ के सबके सुताई से दोस्तों यही बताएला कि ब्रोमफीस भी बड़ा जोर सबन चोरी करे है सूरीनाम देश में हमारे प्यारे प्यारे जनता बोले जॉनी तू ना बताले सेलेंस्की की तोरिया कैसे है और रुसलान के तोरिया कैसे है रुसलान मतलब न सूरीनाम वाला रुसलान ये हैगा दिसवा रुसलान हाँ जो ओरलखवा हुए है उक्रेन से उल्टा कोचोर कोतवाल के अब उक्रेन उल्टे सिर रुसलान के दागे भैया रुसलान बनाए से लंबा लंबा ड्रोन 2000 किलोमीटर फैब्रिक में बनाए से भाई और जितना रफीनाद रही है रफीनाद रही है और काबुल रुसलान में सबके दाग दाग प्लाटा करे है सेलेंस्की उक्रेन के साथ साथ बोटियन भी दागे शुरू करी से काबुल उक्रेन अब जोन Rusland, een van de grootste land waarvoor de exporteren van gas en olie ook er dit mee op deel naar mille admiral lamba lamba rij me kara hoike oude deel jij kelewe heb hij te hier betalen Oekraïne heeft gemunt op Merkel doel in Rusland bolle het bedrijf wil dus op keer ego barka dukaan bier aan John Kali wapen bechatra online u dukanio drone jij ke dak ke platakar is Oekraïne ke अफकलोमन परदाखन में वेब विंकल ला भैया डिस्ट्रीब्यूटिव सेंट्रा रहा ओके सब दा के उक्रेन और ओहू के प्लाटा कर दी से हमारे जनता जो उक्रेन बड़ी बड़ी आगे जा रूसन फिर नीदरलैंड्स क्राइस रखे दी इन हेंगलो से बदरेफ मार्क देख यहाँ पे बताई गई है हेंगलो में हेंगलो तुलन जाने नीदरलैंड में है और बताई गई है कि यहाँ पे बने क्राइस रकेट इन रूसलैंड सेन व्रैकस्टिकन फॉर नीदरलैंड्स क्राइस रकेट इन हंडर गकोमन फॉर रूसीसे मिलिटेरन है सो खान ओम रूटा ब्लॉक 1 दी बदख प्रोड्यूसर्ड इज इन हेंगलो व्हाट इज दिस फॉर बिड्रेव एंड हु फेयर से इज बेट्रोकन बाय द ओरलॉग इन उक्रेन ते क्राइस रकेट नीदरलैंड बनावे है हेंगलो में और ओकर वरक पाई से समय रुसलैंड में अब रुसलैंड चक्कर में हेंगलो है कहा हेंगलो तो हम लोग जाने लग भैया दैट इज द ग्रेंस फ्रॉम डच्लैंड मा इट इज इन नीदरलैंड इन हेंगलो दिस लाव होप दैट वे द अंडर क्राइस रकेटें नीड फॉर रुसलैंड हियर इन नीदरलैंड krijgen दिस हमारा पुआ भी आ गया है प्यारी प्यारी और हमारा पुआ दमयंती भी आके हमारा प्रोग्राम में और जुड़ गया है तो पुआ जी आपको प्यार से बहुत स्वागत करते हैं तो यहां बताए भैया खवापन द वोनिंग अरे भैया वापन सबन वापन लेके गल सूरीनाम देश में रोफ करे पुआ हाँ गल रोफ करे अजय रोफ करे लगल हुआ पे रा भीरा भैया लगल चिल्लाए
लगले चिल्लाई इतना चिल्लान जनता हुआ के बीर जग गए कि कौन जी भैया कि चोर के कान बहरा चोर अपन हक्की पक्की दबाई के और भगल है कुछ ले जाई भी ना पाई से चोरन भैया चोरन कुछ ना ले जाई पाइल है यानी कि उस सब इनम डराई गए घंटा हो चुका है दोस्तों इसी प्रोग्राम से अब हम समाप्त करें इसी गीत से जितने लोग हमारा फेसबुक पे है आप सबको बहुत बहुत प्यार देते हैं प्यारी प्यारी मिला अवत हीरा गीता बिहारी गीत शांता अवतार सुनील दत्त गजरी किसी के जब मिस कर दे भैया नाराजी न मनियो गीता समूज कुमार शामी चित्रा अवतार धर्मेंद्र इसरी टोनी इसरी और कितने लोग हैं दोस्तों जिसको हमने यहाँ पर हबड़ा कर दिया है और अर्चना देविका हनुमान और रोई काली रजेश यानी कि बुद्धू भैया सबके बहुत बहुत प्यार यहाँ से नमस्कार आने वाला शुक्रवार को हमारा तुम्हारा मुलाकात हो।

दिस मिस्टर रेस्टोरेंट. अभी आप लोगों ने मिलन के बारे में और वो है हमारा हम लोग का यानी कि जो ऑर्गेनाइजेटर है होफ ऑर्गेनाइजेटर फॉन सिमर फेस्टिवल मिलन जो सर पार्क पे होगा उसका रिक्लाम तो आप लोग सुन रहे हैं. उससे भी बातचीत हुआ है, उसका इंटरव्यू भी एक दो बार हम दिन को चला देंगे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए.

0: तो दोस्तों रेडियो पे आ गया है और हमारा दोस्त है वो है नशीर। हाँ चाचा जी आ गया है रेडियो पे और पुमा टोपी पहिर के टाइम में गर्मा गर्म मेरे ख्याल से वो डोक्सा को छौंक रहा है। तो भाई नशीर जी आपको भी हम स्वागत करते हैं। अभी आप लोगों ने और खानिशांत और फन मिलन का हेमन ने लक्ष्मण से बातचीत किया है और कि मिलन फेस्टिवल जो है और अब हम कहा बातचीत करेंगे वो है भैया नशीर से। वो हमारा एक दोस्त है जो आज दनहाग शहर में बहुत मशहूर है। तो भाई नशीर चाचा जी नमस्कार हो।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: और कैसे हो आप?
1: सब ठीक ठाक है।
0: और कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है?
1: बैठ के ही हवा ले ला।
0: वो खड़ा होकर भी लोग ले सकते हैं। झूरा बहुत ज्यादा है भाई नसीर जी। ये पानी का प्रॉब्लम कब छूटेगा कुछ मालूम है आपके?
1: नहीं मालूम है, ये बरसात है और झूरा के समय है। भगवान अपन सब काम ठीक से करता है।
0: जो करे अल्लाह ताला वही में खुश रहो, है कि ना? लोग को ऐसे कह रहे हैं कि साहब नोट खुद तफरी
1: तफरी
0: मैं चिल्लाते। अब भाई नशीर फिर बातचीत होगा हमारा तुम्हारा।
1: अच्छा, मुलाकात होगी।
0: ठीक है मुलाकात होगा।
1: अच्छा ओके
0: ओके।

0: तो दोस्तों सूरीनाम देश में इस वक्त लाइव आ गया है हमारा माइक्रोफोन के सामने और सिर्फ आके रहने वाला है और वो है हमारा बड़ा भाई, वो है अवतार जी। अवतार जी जिसे लोग भाइयों के नाम से जानते हैं और वो इस वक्त सूरीनाम से लाइन पे हैं, उससे कुछ बातचीत होगा अपना सूरीनाम के बारे में। भाई सरनाम में कैसे है, हुआ के वेर हमसे बताओ।
1: बहुत विशाल है यार।
0: या विशाल के मतलब कौन सी, गर्म है, ठंडा है, बारिश से जोरा है,
1: खाली खाए पिए घूमे?
0: मौसम के बारे में पूछे ला भाई।
1: मौसम बहुत बढ़िया है।
0: हाँ,
1: और पानी भी बरसे, कभी कभी बरस जाए।
0: गर्मी कैसे है यहाँ पे? कहते कि वहाँ बहुत गर्मी है, फैफन दर्द तक खराब है, क्लॉप हो गए।
1: बहुत गर्मी ना आएगा, खाएगा खाएगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे अच्छा भैया, हम देखिए ना बहुत लेकर लेकर तू खाना खा है। एक स्वाकलक भाई,
1: दाल और रोटी और काबले पोड़ा और चटनी
0: फेखतारी से का
1: आज सुखना है।
0: अच्छा, शुक्रवार के फेखतारी से तो दाल और कढ़ी और रोटी और चटनी भी है।
1: चटनी है बरामी के।
0: अच्छा, घर के बरम भी है कि किलो बाटो? हम बोले चटनी किलो बाटो कि घर के बनावल है? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ए स्पार्क लग भाई, अभी आपको हम तार करेंगे, आप लाइव थे। तो दोस्तों ये था भैया अवतार, सिर्फ आज से भोजन कर रहा है, कह रहा है कि सूरीनाम देश में मौसम ठीक है, कभी बारिश है और कभी झूरा है, और यानी कि खाना पीना है, दाल भात खा रहा है और प्रभु का गुण गा रहा है। हो गई।

खेतवा में हो गई लहरिया, गुलरी के फूल से आज हम अपना प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। आज को ये घंटा आपको हम घुमाएंगे, नचाएंगे, सजाएंगे, कुछ रीमेक्स बैठे गाने से आप लोग की सेवा आज हम करेंगे। जॉनी है हमारा नाम।

ले लो ले लो रे सजना, और नाचो नाचो रे सजनी, नाचो नाचो रे सजनी, और नाचो नाचो रे सजना। आज आप लोग को हम एक घंटा करीब कुछ हॉट वॉन बैठक गाना रिमिक्स, कुछ फिल्मी रिमिक्स हम सुनाएंगे आपके दोस्तों। और दोस्तों कुछ चटनी सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं, ऐसा लगता है और क्या लगता है, आप खुद ही सुनिए।

और चाहे आज मुझे ना पसंद करो, और चाहे कवाड़ी बंद करो, और चाहे दरवाजा बंद करो। दोस्तों आज कुछ रीमिक्स सॉन्ग्स से आज हम आप लोग को जेवा करेंगे। हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर।

उस तो 70 का हिंदी मशूक, और उसके बाद हम चलते हैं इश गुप्ता नहीं है, नहीं इस छुपता नहीं है, सुजल उमराव का ये सॉन्ग है। इस वक्त ये नौजवान जो है, और ये नौजवान बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं दोस्तों।

और तस्वीर नहीं, तस्वीर नहीं बनती दोस्तों। और ये सब नौजवानों का यौवन सॉन्ग है। और हम चलते हैं उसके बाद जाते हैं, और वो है लेडी लेडी एंड लेडी संजना की ओर। आओ मिलकर और झूमे नाचे, और प्रोडक्शन बाय ज्वाला चटनी माश।

और हिलाओ जोर से हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। तब तो बलवा बोली धीरे धीरे ना जोर जोर हिलाओ, उसके बाद हम और एक चटनी की ओर जाते ही आओ सुना जाए। ये भी एक हॉट वन है।

और ऐसा चतुर मोरे भौजाई रे, और जब भौजाई चतुर है तो देवरवासी जरूर माने लगेगा। तो हम चलते नीले गगन पर। तो नीले गगन पर क्या होता है?

0: और नीले गगन सी और चले, तो नीले गगन के बाद हम चलते हैं और एक हॉथोन अंद्रियाना ठाकुर और दिन
1: ओ
0: शिका शिका नहीं।

और सीखा नहीं सबक तूने प्यार का, तो और क्या होगा भैया। उसके बाद चाहते हैं तेरी मेरी गल बन गया है।

0: तेरी मेरी गल बन गई है हमारी यारो। तो अगला गीत चलते हैं कविता राम की सुन पायलिया। ओहो चलो हम बीच सामा डांस
1: की
0: जनकार लाओ मेचे स्विंग स्विंग।

अतराफ असी। तो दोस्तों आज हम आप लोग को उस समय पे जाते हैं जो उन समय पे ये सब सूरीनाम में बहुत हिट सॉन्ग थे दोस्तों, और उसके बाद हम

और कितना दिन पे इस गीत को हमने सुना है कि मेरी पुछली चिड़ैया और दुल्हवा लिए जाए और मैना बोल रे हम चलते हैं सुखी अकल के ओरे।

ओ सुखी अकल क्या वांच में, हम सब इस गीत को कितनी दिन बाद सुना है दोस्त। तो एक और हो जाए और वो है रोमियो बोली नानी, भोली नानी, पुराना गीत है।

और नानी से और कह रहे है रोमियो दोंक बोले है ना गुस्से ये नानी रोमियो दोंक द ईगल कैलिप्सो कासिको एंड चटनी किंग का ओल्ड बहुत पुराना गीत है जो आप सबको एक बार ना सौन बार इस गीत को आप लोग सुन चुका होगा।

फनफुनके हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में, लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

मेरी प्राणों में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देन हाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरी दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये जोंग है, कुछ लोकल जोंग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जों है दोस्तों, चटनी जों। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सुकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सुकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और ये था सविता सिंह। दोस्तों कुछ शोका सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो दोस्तों मुकेश भाई थी, मुकेश करोड़ों को करोड़ों का दिल चुराने वाला, हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

शुद्ध हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, चीज ही नमोई फिल्म है से। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करने दी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. They are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और आप नाराज खुदा कहरे करे दोस्तों, क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन तरह से आना ये गीत आपको बताते हैं।

0: और तुम इस तरह से और मेरी जिंदगी में शामिल जरूर होना।
1: तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

0: हाय जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त 1965 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी, मेरी हम सफरी, और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो, हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निमर्रे, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, और गुस्सा मत कीजिए पदमाश श्री मोहम्मद रफी, और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कभी न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। आना तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत है। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में, जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना हो सकता है ना चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा कि आपका धंधा फटाफट चल पड़ेगा। या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट या तो शोज वगैरह, वो भी फुल हाउस हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर, और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ यारों की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टाइडेंस कंटोर यूर फन मांडाग टॉट फ्राइडाग फन 9 यूर स्मॉर्गंस टॉट 5 यूर स्मिडाग्स। कंटोर का नंबर 07-365-2047 और स्टूडियो का तार का नंबर 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप पा सकते हैं बेल टाइडेंस कंटोर यूरोप 07-365-2047 फन मांडाग टॉट फ्राइडाग फन 9 यूर स्मॉर्गंस टॉट 5 यूर स्मिडाग्स। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। वादा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को प्रोग्राम के तरफ। और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म दिल एक मंदिर तक, और इस मूवी में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न द ग्रेट मीना कुमारी जी के साथ, महान अभिनेता राजकुमार और कॉमेडियन महमूद जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार शंकर जयकिशन, लेखक शैलेंद्र और शोभा कोटे। महमूद जी के साथ बहुत ही फिल्मों में ये महान अभिनेत्री जी ने काम किया है, ये भी इस फिल्म में काम किए हैं। तो उसी फिल्म में से कुछ गाने आप सुन चुके थे बीते हुए सप्ते, और कुछ गाने रह गया था सुनाने को। तो एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त सॉन्ग है, ये नगमा मेरे दिल के बहुत ही करीब है, रफी साहब जी का गाया हुआ ये सुपरहिट एवरग्रीन सॉन्ग, की याद न जाए बीते दिनों की। अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन, लेखक शैलेंद्र के अल्फाजे और रफी साहब जी की आवाज मिल के सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

जबरदस्त दिल को छू लेने वाला बयान, याद न जाए बीते दिनों की एक फिल्म दिल एक मंदिर। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन uit 1963, Orkiawaz, Orkial Faze, Shailendra Rafisabji ke beautiful song, evergreen song. Ik hoor beautiful song aap shringe aur is baar late hai aap sabhi ke seva mein mahan gaane wali Nightingale Suman Kalyanpur ji ke ये अति सुंदर और एवर ग्रीन सॉन्ग ओ मेरी लाडली। देखा रेडियो राधिका, रेडियो राफर, यार 60 70।

Ladeli uit de film Deel ik Mandir 1963, Suman Kalyanpur ji ke madhur awaaz mein Shankar Jai Kishan ke saaj. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, एक छोटा सा बयान आई डी फिल्म दिल एक मंदिर आप सुनेंगे भजन के रूप में. ऑंको फेर इट्स मेयर दान एन मिनट लॉन्ग. महान गाने वाले उस जमाने के एस जानकी जी के महान और मधुर आवाज में.

जबरदस्त आवाज के मालकिन एस जानकी जी के ये अति सुंदर छोटा सा भजन आपने सुना। एड फिल्म दिल एक मंदिर कंपोज बाय शंकर जय किशन। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म दिल एक मंदिर का मैं आप श्रोताओं को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त ट्रेजेडी मूवी जो निकाला गया था, गहरा दाग। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है ब्यूटीफुल माला सिन्हा जी के साथ, मदन पुरी जी इस फिल्म में काम किया है, संगीतकार रवि शर्मा और लेखक शाकिर बादायूनी के गाने आप सुनेंगे। तो उसी फिल्म में से कुछ नगमे मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने को। तो एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनेंगे, आज उड़ता हुआ एक पंछी जिंदगी की बहारों में आया, रवि साहब जी के जबरदस्त ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कंपोज बाय रवि।

आज उड़ता हुआ एक पंछी, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गहरा दाग 1963, रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय रवि शर्मा। गौर शिक्षा से भरा हुआ बयान आप सुनेंगे और इस बार आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कि सुबह का भूला शाम घर आए वो भूला ना कहे।

अति सुंदर शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान एड फिल्म गहरा दाग निहित इंद्रियन शस्त्र कंपोज बाय रवि शर्मा और आशा भोसले और साथियों के साथ ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय श्रोताओं, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी गहरा दाग निहित इंद्रियन शस्त्र रवि शर्मा के साथ एक बार फिर बहुत ही सॉफ्टली आवाज में ये नगमा को प्रस्तुत किया है। आशा जी मिलके सुनते हैं कि कैसे

कैसे कहूँ मैं बात जिया की। ऐ फिल्म गहरा दार 1963 क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले इन एन अंदर स्टाइल गेजंगे गेकम्पोनेर्ड डोर माएस्ट्रो रवि शर्मा। मैं तेरी हुई रे बालमा क्या बात है, लवली सॉन्ग सुनने को जा रही है एक बार फिर आयशा भोसले जी फ्रॉम द मूवी गहरा राग रवि शर्मा के साथ पर।

बालमात ही सुंदर बयान ने आयशा भोसले और साथियों के साथ ये थी सुंदर बयान आप सभी को सुनाया क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले रवि शर्मा जी के सांच पर फ्रॉम द मूवी गहरा दाग रिलीज किया गया था अब 1 जनवरी 1963 को। तुम्हारी पेपरी साथियों वक्त हो गया है कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। तो अर्ज किया है यारो कि प्यार वो है जिसमें सच्चाई साथ हो, प्यार वो है जिसमें सच्चाई साथ हो, साथी की हर बात का एहसास हो, उसकी हर अदा पर नाज हो, दूर रहकर भी पास होने का एहसास हो। कैसे कहे कि आप कितनी खूबसूरत है, कैसे कहें कि हम आप पे मरते हैं, ये तो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। को दिल से जुदा ना कीजिए, दिल को दिल से जुदा ना कीजिए, सारा सोच समझ कर फैसला लीजिए। अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, अगर आप जी सकते हैं हमारे बिना, तो बस हमारे मरने की दुआ कीजिए। मत सोना अपनी मोहब्बत के कंधे पर सर रख कर, मत सोना अपनी मोहब्बत के कंधे पर सर रख कर, क्योंकि ये जब बिछड़ती है तो तकिए पर भी नींद नहीं आती। वफा का दरिया कभी रुकता नहीं, इश्क में प्रेमी कभी झुकता नहीं, खामोश है हम किसी के खुशी के लिए, खामोश है हम किसी के खुशी के लिए, ना सोचो कि हमारा दिल दुखता नहीं। बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, बहते अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिले जो प्यार तो कदर करना, मिले जो प्यार तो कदर करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। जो था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए, आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, फ्रॉम द मूवी गहरा दाग एक जबरदस्त दिल को छू लेने वाला नगमा है, शिक्षा से भरा हुआ भी है और ये नगमा भी मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि बचपन में मैं ये फिल्म को देखा था हैप्पी कंपार नख्त अखनी के नुसलाप, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, ट्रेजिक से भरा हुआ, खैरी से भरा हुआ है, तो जब फुर्सत मिले तो देखना राजेंद्र कुमार जी का ये सुपरहिट मूवी गहरा दाग। कि भगवान ने एक कसूर की इतनी बड़ी सजा, जिस खूबी से रफी साहब जी ये नगमा को गाया है कि क्या बताऊं, जितने तारीफ किया जाए कम है। अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय रवि शर्मा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला नगमा की भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा एक फिल्म गहरा दाग 1963 कंपोज बाय मैस्ट्रो रवि शर्मा और सुनाया महान गायक द ग्रेट सुरों का बादशाह रफी साहब जी। रिकॉर्ड के जबरदस्त नगमा आप सुनने वाले हैं also from the film Gehra Daag 1963 composed by Ravi aur sunane ko ja rahe hai mahan sangeetkar ke gayak jodi Rafi sahab aur Asha Bhosle ji jitne duet gaaye hain sabhi super hit sabit hue tumhe paake humne jahan pa liya kya baat hai beautiful songs sabhi प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

0: टीफू सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हमराही टाइटल सॉन्ग, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, uit 1963, Shankar Jai Kishan के साज पर हसरत जयपुरी के अल्फाजे और आवाजें थे सुरों का बादशाह रफी साहब और मुबारक बेगम जी। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।
1: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
0: तो साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, From the movie Lalkar, composed by the brothers Kalyanji Anand ji. और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आज गालो मुस्कुरा लो महफिले से जालो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसीलिए हम लोग तो सदियों से आप सभी से एक यही कहते आ रहे हैं ना कि हैव टू नॉट स्टार्ट द लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम, आउट इस गोत गीत और गजल, महान संगीतकार पुराने जमाने का फ्रॉम द 50s 60s 70s, मैस्ट्रो जयदेव जी का बनाए हुए कुछ नगमे लेकर आया हूँ, और बाद में सिर्फ नगमे सुनेंगे आप जिन मूवीज में द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार जी ने काम किए हैं, बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे, क्योंकि आप है तो हम लोग भी है। रवि साहब।

गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ एक महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, जो मेरे ख्याल से लिखा है भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं हमारे भारत देश में, मेरदान तख्त दायसंत लीडर, एक अति सुंदर आवाज़ का मालिक और संगीत का एक महाज्ञानी डॉक्टर येसुदास जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे एक फिल्म अलाप 1977। महान लेखक द ग्रेट अमिताभ बच्चन जी का पूज्य पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव जी। कोई गाता तो मैं सो जाता।

आता और मैं सो जाता, अ ग्रेट कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो जयदेव, डॉक्टर येसुदास के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी अलाप 1977। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ऑल्सो फ्रॉम द मूवी अलाप। गाने वाले एक बार फिर डॉक्टर येसुदास और साथ दे रही है मधुरानी और कुमारी फैयास। जयदेव जी के मधुर संगीत पर और लिखा है अति सुंदर बयान को राही मजूम राजा जी। मिल के सुनते हैं नई री लगन और मीठी बतियां।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, नायरी लगन और मीठी बतिया पिया नहीं आए, फ्रॉम द मूवी अलाप निहरिंग 77 तक मायस्ट्रो जयदेव का बनाया हुआ है अति सुंदर धुन सुनाया आप सभी को एक बार फिर से वही महान गायक डॉक्टर येसुदास मधुरानी मिलके और साथ दे रही थी कुमारी फैयाज। फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो संगीतकारों का दासा नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। पुराने जमाने के जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव जी के स्पेशल आप सुन रहे हैं। ओ मितवा बदरा छाई रे कारे कारे एक फिल्म मान जाइए 1970 खास करके ट्रिब्यूट टू जयदेव वर्मा जी, ये महान संगीतकार के नाम पे एक ट्रिब्यूट निकाला। तो मिलकर सुनते हैं लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में नक्श लियालपुरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान।

beautiful classical song duet Airitu Sawan ki The Great Bhupender Singh aur Kumari Vyas ki awaaz mein uit de film Alaap 1977, composed by maestro Jaydev Verma. तो यारो वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने मनुष्य के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं यारो, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है बड़ी बड़ी पुराने जमाने का आदमी था, एवसन ग्रीक्स फिलोसोफ प्रोटागोरस, लीवड़ तुसे 420 तो 490 फोर क्रिस्टस। और प्रोटागोरस ने कहा है मनुष्य के बारे में यार कि द मेंस इज द मात फन अले दिंगन। आगे में कहा श्री अलेक्सेंडर सोल्शेनित्सिन, हाय वाज एन रूसी स्क्राइवर एंड डिसिडेंट 1918-2008। और अलेक्सेंडर सोल्शेनित्सिन ने कहा है मनुष्य के बारे में यार कि de mens is geen duivel, maar voor zijn medemens een plaag. William Hazlitt, Engels schrijver 1778-1830. William Hazlitt, ik haai mijn oesje gebaar mee, Aruki. De mens is het enige dier dat lacht en huilt. Want hij is het enige dier dat getroffen wordt door het verschil tussen wat de dingen zijn en wat ze zouden moeten zijn. Gaby van den Bergen, Nederlands journalist en auteur. Verder identiteit onbekend. Er Gaby van den Bergen, ik haai manusje kebarmerki. De mens leeft niet van brood alleen. Hij wil ook spelen. André Gide, Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur 1947, leefde van 1869 tot 1951. André Gide, ik haai manusje barmerki. De mens ontdekt geen nieuwe oceanen als hij de moed niet heeft om de kust uit het oog te verliezen. William Shakespeare, Engels toneelschrijver en dichter. 1564-1616. William Shakespeare, nek hai, manusje kebarmearki. De reinste schat des levens is een onbevlekte reputatie. Is deze verloren, dan is een mens slechts verguld leem of geschilderd klei. Søren Kierkegaard, Deens filosoof, 1813-1855. Søren Kierkegaard, nek hai, de waarde van de mens wordt in de natuur toch nog erkend. Wanneer men vogels uit de buurt van vruchtbomen wil houden, zet men er iets op wat op een mens lijkt en reeds die verre gelijkenis met een mens van de vogelverschrikker is voldoende om respect in te boezemen. Nog eentje van William Hazlitt, Engels schrijver 1778-1830. William Hazlitt, een eerlijk mens spreekt de waarheid, al mag die aanstoot geven. Een ijdel mens is het juist om dit laatste te doen. Muhammad Ali Bhikuch Kahai, de Amerikaanse bokser, 1942-2016. Muhammad Ali Nekahai, een mens die de wereld hetzelfde ziet op zijn 50ste als op zijn 20ste,
heeft 30 jaar van zijn leven verspild. En de laatste van vandaag, Jean-Paul Sartre, Frans schrijver, filosoof en Nobelprijs literatuur 1964. Leefde van 1905 tot 1980. Jean-Paul Sartre, Nikahai, Manouche, Kebarme, Aroki. Een mens kan niet meer mens zijn dan de anderen, doordat de vrijheid in elk even oneindig is. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, भी आप कुछ कहावतें उदाहरण सुना जो मनुष्य के बारे में जाता है. वी नेट कुन लुइस्टर नार पासेर ले रेक सिताते दी ओवर द मेंसहेड गिंग. ये आशा उम्मीद लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे इन बातों से ना. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है. गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड, संगीतकार का दास्तान नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं. मास्टरो जयदेव वर्मा जी के कुछ कंपोज किए हुए नगमे आप सुन रहे हैं. एक बार फिर फ्रॉम द मूवी अलाप. और आप तो जानते हैं असरानी जी को, जबरदस्त कॉमेडियन, तो अपने ही स्टाइल में ये अति सुंदर बयान को गाया है श्री असरानी जी, कंपोज बाय जयदेव. राही मसूम रजा का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान कि हो रामा डर लागे अपनी उमरिया से. क्या बात है.